मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि तदनुसार गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 है। प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक

0: शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं और आपको सुना रहे हैं ये देश गान समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे समोह स्वर में ये देश गान, और अब लीजिए सुनिए विपिन सचदेवा की आवाज़ में माँ जगदम्बे की ये भजन।

अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम आराधना के अंत में लीजिए सुनिए माँ लक्ष्मी की आरती।

0: माँ लक्ष्मी की इसी आरती के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। अभी प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख। विषय है आत्मसंरक्षण। संकलन और वाचन स्वर है पौलोमी हरि का।
1: मनुष्य सहित इस संसार का प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। अपने जीवन, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करने की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही आत्मसंरक्षण कहलाती है। यह केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी अपने भीतर समाहित करती है। आत्मसंरक्षण प्रकृति द्वारा प्रत्येक प्राणी को प्रदान की गई ऐसी शक्ति है जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति में आत्मसंरक्षण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। पक्षी अपने घोंसलों को सुरक्षित स्थानों पर बनाते हैं, पशु खतरे की आहट पाते ही सतर्क हो जाते हैं और पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को बचाने के लिए विशेष प्रकार के अनुकूलन विकसित कर लेते हैं। मनुष्य में भी यह प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जब कोई व्यक्ति आग, दुर्घटना या किसी अन्य संकट का सामना करता है तो उसका पहला प्रयास स्वयं को सुरक्षित रखने का होता है। यही आत्मसंरक्षण की भावना है। आत्मसंरक्षण केवल शारीरिक जीवन की रक्षा तक सीमित नहीं है। आज के युग में मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। अत्यधिक तनाव, चिंता, अवसाद और प्रतिस्पर्धा के दबाव के बीच व्यक्ति को अपने मानसिक संतुलन की रक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए उचित विश्राम, सकारात्मक सोच, स्वस्थ संबंध और आत्मविश्वास आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है तो उसका संपूर्ण जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए मानसिक आत्मसंरक्षण आधुनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी आत्मसंरक्षण का विशेष महत्व है। व्यक्ति को ऐसे संबंधों और परिस्थितियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए जो उसके आत्मसम्मान या मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाते हों। दूसरों की सहायता करना एक महान गुण है, परंतु स्वयं को पूरी तरह भूल जाना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लगातार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है तो वह धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। इसलिए आत्मसम्मान और आत्म देखभाल भी आत्मसंरक्षण का ही हिस्सा है। आर्थिक आत्मसंरक्षण भी वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए व्यक्ति को अपनी आय, बचत और संसाधनों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचना, बचत करना और भविष्य की योजनाएं बनाना आर्थिक आत्मसंरक्षण के महत्वपूर्ण उपाय हैं। हालांकि आत्मसंरक्षण और स्वार्थ में अंतर समझना आवश्यक है। आत्मसंरक्षण का अर्थ केवल अपने हितों के बारे में सोचना नहीं है। यह स्वयं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, जबकि स्वार्थ में व्यक्ति दूसरों के हितों की उपेक्षा कर देता है। एक संतुलित व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करते हुए समाज और दूसरों के प्रति अपने दायित्वों का भी निर्वाह करता है। इसलिए आत्मसंरक्षण को स्वार्थ नहीं बल्कि विवेकपूर्ण जीवन प्रबंधन के रूप में देखा जाना चाहिए। आज के तेजी से बदलते संसार में आत्मसंरक्षण का महत्व और भी बढ़ गया है। तकनीकी विकास, सामाजिक परिवर्तन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, भावनाओं और संबंधों और संसाधनों की रक्षा करना सीखना होगा। आत्मसंरक्षण हमें केवल जीवित रहने की नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अंततः कहा जा सकता है कि आत्मसंरक्षण जीवन का मूल स्वभाव और आवश्यकता दोनों है। यह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और विवेक प्रदान करता है। जो व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखता है वही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से पालन कर सकता है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसंरक्षण के महत्व को समझते हुए अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख। विषय था आत्मसंरक्षण।

संकलन और वाचन स्वर था पौलोमी हरि का। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर है अनुराधा पौडवाल के और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

0: गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायन स्वर थे अनुराधा पौडवाल के और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय है मुनगा की खेती लाभकारी।
1: मुनगा की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद। मुनगा एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय सब्जी है। इसे ड्रमस्टिक मुनगा, सहजन, सेंजना, गनीगना, मुलाकाई, मुरंगी या मुरंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुलायम पत्तियां अपरिपक्व और अर्ध परिपक्व फल खाए जाते हैं। इसमें औषधीय गुण भी विद्यमान होते हैं। यह एक अलग विशिष्ट और लुभावने स्वाद के कारण प्रसिद्ध है। मुनगा के वृक्ष का फल, पत्ती, फूल और तना सभी उपयोग में लाया जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फल, फूल, पत्तियां और पौधों का प्रयोग पानी शुद्ध करने में, गोंद बनाने में, हरी खाद बनाने में, पशुओं का चारा बनाने में किया जाता है। उन्नतशील किस्में PKM1। यह प्रजाति पूरे भारत में बहुत प्रचलित है। फलियां लंबी 65 से 70 सेंटीमीटर, अधिक गूदेदार, हरे रंग की और अधिक पैदावार वाली प्रजाति है। रोपण के 90 से 100 दिन के बाद फूल देना आरंभ करती है। इसकी लाभदायक फसल 3 से 4 वर्षों तक ली जा सकती है। PKM2। यह लंबी फल वाली प्रजाति है। फलियां अधिक लंबी होने से विपणन में कुछ कठिनाई आती है। इसकी फलियां हरे रंग की 45 से 75 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और प्रत्येक पौधे में 300 से 400 फलियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसकी लाभदायक फसल 3 से 4 वर्षों तक ली जा सकती है। Coimbatore 1। इसकी फलियां हरे रंग 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी और 60 से 80 ग्राम वजन वाली होती हैं। प्रत्येक पौधे से 400 से 600 फलियां प्राप्त होती हैं। इसकी सफलतापूर्वक खेती 8 से 10 वर्षों तक ली जा सकती है। Coimbatore 2। इसकी फलियां हरे रंग 25 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और प्रत्येक पौधे से 250 से 300 फलियां प्राप्त होती हैं। इसकी सफलतापूर्वक खेती 3 से 4 वर्षों तक ली जा सकती है। भूमि और जलवायु। इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में होती है। रेतीली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.8 से 8 के बीच हो उपयुक्त पाई गई है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद की जुताई देसी हल से करनी चाहिए ताकि मिट्टी में वायु का संचार भली भांति हो एवं जल निकास के लिए नाली और मेड़ बन जाए। यह उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण जलवायु की फसल है। यह पौधा जल भराव और पाला पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं लगाया जा सकता है। इसकी अच्छी बढ़वार 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। बीज की बुआई का समय। पौधशाला में इनके बीजों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। बीज को पॉलीथीन की 15x10 सेंटीमीटर आकार की 200 गेज मोटी थैलियों में कंपोस्ट, मृदा, रेत 2:1:1 में 24 घंटे से पानी में भिगोए हुए दो दो बीजों की बुआई कर देते हैं। ध्यान रहे कि पॉलीथीन की थैलियों की पेंदी में 2 से 3 छिद्र अवश्य हों। बीजों की बुआई के उपरांत थैलियों को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां धूप हो। बीज की मात्रा। बहुवर्षीय प्रजातियों में 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1500 से 1600 कटिंग की आवश्यकता पड़ती है और 1 वर्षीय किस्मों के लिए 2 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पड़ती है। बीज की बुआई, पौधरोपण की दूरी। 45x45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं और दोनों ओर 2.5 मीटर दूरी रखी जाती है। 15 किलो कंपोस्ट या गोबर खाद प्रति गड्ढे में डालते हैं। बीज की बुआई से पूर्व 18 से 24 घंटे पानी में डुबोकर रखना चाहिए। बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा और 1 या 2 बीज प्रति गड्ढे बोते हैं। पौधशाला में जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तब इन्हें मुख्य खेत में रोपित किया जाता है। रोपण कतार से कतार 2.5 मीटर और पौधा से पौधा 2 मीटर करना चाहिए। बहुवर्षीय प्रजातियों से 1 वर्ष पुरानी शाखा लेकर जो कि 1 से 1.5 मीटर लंबी और 5 से 6.5 सेंटीमीटर व्यास की हो कर्तन लगाने के लिए उपयुक्त होती है। खेत में लगाते समय कटिंग का 30 से 50 सेंटीमीटर भाग मिट्टी में दबा देना चाहिए।

0: और शेष भाग जमीन के ऊपर रखना चाहिए। कटिंग लगाने के बाद ऊपरी सिरे पर कच्चा गोबर की टोपी अवश्य पहना देवें ताकि ऊपरी हिस्से से नमी उड़ने न पावे। कटिंग लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय था मुनगा की खेती लाभकारी। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण में

आज सुबह 7 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में आप सुनिएगा मुन्ना राम गोड़ और साथी, सामलाल गोड़ और साथी, लल्लू राम राजवाड़े और साथियों के स्वर में सरगुजिया लोक गीत। सुबह 7:15 पर चंद गजलों के कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा चंद गजलें। सुबह 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सुबह 9 बजे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे। सुबह 9:55 पर और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10 बजे आप सुनिएगा तापमान की सूचना, उसके बाद कार्यक्रम विवरण, फिर आप सुनेंगे लोक गीतों का फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। सुबह 11:05 पर कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 12 बजे आप सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम चयन का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। दिन में 1:10 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आप सुनेंगे क्रम बातचीत, क्रम गुलदस्ता, क्रम घरेलू नुस्खे और कुछ गीत संगीत। दिन में 1:40 पर और रात 9:30 पर कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण समय होगा। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनिएगा शाम 5:05 पर। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में युवा साथी आज सुनेंगे क्रम युवा सोच और क्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:05 पर कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। शाम 6:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम गोधुली में हम आपको सुनाएंगे राम भजन और साथी, मुंजन दास मानिकपुरी और साथियों के स्वर में सरगुजिया लोक गीत। शाम 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी में सुनिएगा कुछ फिल्म संगीत। शाम 7:05 पर आप सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोता और किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। इसमें आज सुनिएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और प्लास्टिक प्रदूषण सुविधा से संकट तक, इन विषयों पर सामयिक चर्चा। शाम 7:30 पर क्रम किसानवाड़ी का प्रसारण किया जाएगा। इसमें सुनिएगा क्रम आजकल, क्रम नया दौर, मंडी भाव, मौसम कर जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श और आज कर सवाल। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब हम संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुन्ना राम गोंड और साथी, सामलाल गोंड और साथी और लल्लू राम राजवाड़े और साथियों के स्वर में सरगुजिया लोक गीत। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनिए मुन्ना राम गोंड और साथियों के स्वर में बायर गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजे जंगल में अब लीजिए सुनिए श्याम लाल गोंड और साथियों के स्वर में डोमका गीत।

अभी आप सुन रहे थे सामलाल गोड़ और साथियों के स्वर में डोमका गीत, और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए लल्लू राम राजवाड़े और साथियों के स्वर में छोटे भुइहारी गीत।

अभी आप सुन रहे थे छोटे भुईहारी गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब यहीं समाप्त होता है। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चंद गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत

अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज में कतिल राजस्थानी की लिखी ये गजल। इसे हमने लिया है सामे गजल्स एल्बम से। तो लीजिए सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल।

0: और इसी गजल के साथ ही आज का कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
2: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज के सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में। आज के अंक में आपके साथ मैं हूं विजय कुमार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुँच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। और श्रोताओं अब हम आपको बता दें, जनसंपर्क विभाग सरगुजा से प्राप्त सूचनाएं। 4 जून को होगी प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा। जिले में 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए, 11,841 अभ्यर्थी होंगे परीक्षा में शामिल। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आज 4 जून 2026 को प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित की जाएगी। जिले में परीक्षा कुल 36 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी और परीक्षा में कुल 11,841 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुँचें, ताकि फ्री स्क्रीनिंग एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, इसलिए मुख्य द्वार प्रातः 9:30 तक बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आएँ। काला, गहरा नीला, गहरा हरा, जामुनी, मैरून, बैंगनी और गहरा चॉकलेटी रंग वर्जित होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले रिपोर्ट पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जाँच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। फुटवियर में केवल चप्पल पहने, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, बेल्ट, स्कार्फ, टोपी, ये सभी ले जाना वर्जित है। अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही और अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। परीक्षार्थी केवल नीले या काले बाल पेन साथ में ही लेकर आएँ। और अब आगे की सूचना इस गीत के बाद, तो लीजिए सुनिए सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म फर्ज का गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म फर्ज का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब हम आगे बढ़ते हैं अगली सूचना की ओर। शैक्षणिक

सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों एवं संबद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में CBCS/NEP 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sggcg.in के माध्यम से 1 जून 2026 से 20 जून 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन कर सकेंगे। प्रथम चरण में केवल ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया, मेरिट सूची, प्रवेश तिथि और अन्य आवश्यक निर्देश उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर एवं प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार पृथक से जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों के लिए ABC ID आपार ID बनाना अनिवार्य किया है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व www.abc.gov.in या डिजी लॉकर के माध्यम से ABC ID या APAR ID तैयार कर उसकी प्रविष्टि ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना आवश्यक होगा। ऑनलाइन पंजीयन के लिए ₹100 शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। एक बार पंजीयन करने के पश्चात अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के लिए एक से अधिक महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों का चयन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर 9008399749 पर संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश के इच्छुक सभी विद्यार्थियों से निर्धारित समय अवधि के भीतर ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन करने का आग्रह किया है। और इस सूचना के बाद अब लीजिए सुनिए फिल्म बैजू बावरा का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीत है नौशाद अली का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: अभी आप सुन रहे हैं जनसंपर्क से प्राप्त सूचना और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। और अब हम आपको बता दें, जनसंपर्क विभाग MCB से प्राप्त सूचनाएं। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 6 जून को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगाएगा कृषि ऋण आउटरीच कैंप। सभी 13 शाखाओं में मिलेगी लोन की सुविधा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आगामी 6 जून 2026 को पूरे देश के साथ साथ मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में एक विशेष कृषि ऋण आउटरीच कैंप का आयोजन करने जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से जिले के किसानों, कृषि उद्यमियों और ग्रामीण व्यवसायियों को कृषि से जुड़ी विभिन्न ऋण योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अग्रणी जिला प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6 जून को संपूर्ण भारत में इस अभियान को चला रहा है। इसी कड़ी में MCB जिला में स्थित बैंक की सभी 13 शाखाएं इस आउटरीच कैंप का हिस्सा बनेंगी। इस विशेष कैंप का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। शिविर के दौरान कृषि से संबंधित अलग अलग लोन योजनाओं के तहत आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर मौके पर ही ऋण की स्वीकृति और संवितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अग्रणी बैंक अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार खेती किसानी से जुड़े किसान, एग्री स्टार्टअप, कृषि उद्यमी और सभी ग्रामीण छोटे बड़े व्यवसायी इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ने सभी इच्छुक नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी ज़रूरत के अनुसार कृषि ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अपनी नज़दीकी शाखा से तुरंत संपर्क करें और अपना आवेदन जमा करें। और इस सूचना के बाद लीजिए सुनिए गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म CID का गीत। गीतकार हैं जानिसार अख्तर और संगीतकार हैं OP नैयर।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09।

0: किलोमीटर चाहे कहीं तो 1260 किलो हर्ट्ज पर नहीं। अब आजकल तो भाई कहता है कि यदि एफएम में भी 100.2 मेगा हर्ट्ज में भी एला यदि सुन सकते
1: हैं। हाँ, अभी तो शुरू होगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई, अब माहू सुन हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम, खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

0: उत्कर्ष योजना की प्रवेश परीक्षा स्थगित। कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए नई तिथि का इंतजार। 26 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा फिलहाल टली, शासन द्वारा जल्द जारी करेगा संशोधित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया एवं आवंटित संस्थाओं के इम्पैनलमेंट कार्य में विलंब होने के कारण ये निर्णय लिया गया है। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 26 जुलाई 2026 रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अब निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं होगी। कार्यालय कलेक्टर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को इस संबंध में सूचित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन जमा नहीं किया जाए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आवंटित संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश शासन स्तर से प्राप्त होने के बाद परीक्षा की नई तिथि और आगे की प्रक्रिया की जानकारी पृथक रूप से जारी की जाएगी। प्रशासन ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी केवल अधिकृत शासकीय स्रोतों से ही प्राप्त करें और किसी भी प्रकार की भ्रामक या अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे उनके शैक्षणिक और प्रतिस्पर्धात्मक विकास को नई दिशा मिलती है। शासन द्वारा नई परीक्षा तिथि और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अद्यतन जानकारी शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है, जिसके बाद इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। और इसी सूचना के साथ ही आज का जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा अब यहीं समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हम समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग

0: को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित

0: करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy

फिल्म डॉन का गीत अब लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में। शब्द रचना है इंदिवर के और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। मनहर उदास की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत। गीतकार हैं निदा फाजली और संगीतकार हैं उषा खन्ना।

अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत निर्देशन में फिल्म पिया का घर का ये गीत। स्वर दिया है किशोर कुमार ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का ये अंतिम गीत लीजिए, सुनिए येसुदास की आवाज़ में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का और फिल्म का नाम है नैया।

अभी आपने सुना येसुदास की आवाज़ में फिल्म नैया का गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

ही विजय, स्वीकार कीजिए मेरा अभिवादन, नमस्कार। साथियों, कभी कभी जब हम किसी बच्चे की खिलखिलाती हंसी सुनते हैं तो लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसी मुस्कान में समा गई हों। बच्चों की आंखों में सपने होते हैं, मन में उत्साह होता है और भविष्य के रंग बिरंगे चित्र होते हैं। लेकिन सोचिए, यदि किसी बच्चे का बचपन युद्ध, हिंसा, संघर्ष या आक्रामकता की भेंट चढ़ जाए तो उसके सपनों का क्या होगा? उसकी मुस्कान कहाँ चली जाएगी? इन्हीं सवालों के बीच हर साल 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। साथियों, ये दिवस उन मासूम बच्चों की पीड़ा को समझने का अवसर है जो किसी गलती के बिना ही हिंसा और संघर्षों का शिकार बन जाते हैं। दुनिया के अनेक हिस्सों में बच्चे आज भी युद्ध, आतंकवाद, सामाजिक हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। उनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थितियां उन्हें भय और अनिश्चितता का सामना करने पर मजबूर कर देती है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर अध्याय माना जाता है दोस्तों। ये वो समय होता है जब बच्चे सपने देखना सीखते हैं, गिरकर संभलना सीखते हैं और जीवन की पहली खुशियों को महसूस करते हैं। लेकिन जब किसी बच्चे के आसपास हिंसा का वातावरण बन जाता है तो उसका बचपन समय से पहले ही गंभीर हो जाता है और वो मुस्कान जो घर आंगन को रोशन करती थी कहीं खो जाती है। तो आज हम बातें करेंगे आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। आगे बातें करें उससे पहले लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत अनु मलिक और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है नितिन रायकवार ने और संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है जुड़वा।

लंकन गोरी नाना, लंकन की छोरी नाना, पारस की पोरी नाना, इंडिया, आहा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट।

भाई शर्मीली वावा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

वाह वाह, बच्चन की एक्टिंग वाह वाह, सुनील गावस्कर वाह वाह, कपिल द सिक्सर वाह वाह, लता मंगेशकर वाह वाह, जाकिर का तबला वाह वाह, भारत नाट्यम वाह वाह, यहाँ का भांगड़ा वाह वाह, यहाँ की लावणी वाह वाह, यहाँ का डांडिया वाह वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे यहाँ की ईद बाबा यहाँ दिवाली बाबा यहाँ की होली बाबा दुल्हन की डोली बाबा चनिया चोली बाबा मीठी बोली बाबा
1: North, South, East or West India is the best the land of culture the land of dreams this is the land of you and me
0: राजे शिवाजी बाबा अकबर बादशाह बाबा महात्मा गांधी बाबा चाचा नेहरू बाबा बाबा अंबेडकर बाबा मदर टेरेसा बाबा
1: We're taking it up and we're taking it down this is the Indian sound together so strong in God we trust yeah you cannot beat us
0: ताज महल बाबा चार मीनार बाबा आम का अचार बाबा यहाँ का प्यार बाबा ऐश्वर्या राय बाबा सुष्मिता सेन बाबा ऑल इंडिया रेडियो बाबा डीडी मेट्रो बाबा दूरदर्शन बाबा

0: तारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
1: तारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
0: हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, कम ऑन लेट मी हियर यू से, कम ऑन एवरीबॉडी से।

साथियों, हमारे देश में एक कहावत है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब हम किसी बच्चे की मदद करते हैं, उसे स्नेह देते हैं या उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तो वास्तव में हम मानवता की सेवा कर रहे होते हैं। यही भावना इस दिवस का, यानी आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मूल संदेश है कि हर बच्चे को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिले। आज के समय में आक्रामकता केवल युद्ध तक सीमित नहीं है दोस्तों, कभी कभी बच्चों को घरेलू हिंसा, शोषण, उपेक्षा, बाल श्रम और मानसिक प्रताड़ना जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं, इसलिए बच्चों के प्रति संवेदनशील होना और उनकी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। अब लीजिए सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म इम्तिहान।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि कई बच्चे केवल थोड़े से प्रेम, प्रोत्साहन और सुरक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक स्नेहपूर्ण शब्द, एक प्रेरणादायक मुस्कान और एक सहयोगी हाथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। समाज की वास्तविक प्रगति तभी मानी जाएगी जब उसके बच्चे सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल होंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें, बच्चों को ऐसा वातावरण मिले जहां वो बिना डर के सीख सकें, खेल सकें और अपने सपनों को उड़ान दे सकें। हमें ये समझना होगा कि किसी भी बच्चे की पीड़ा केवल उसके परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की पीड़ा होती है। दोस्तों, जब हम किसी बच्चे को हंसते हुए देखते हैं तो मन में एक विश्वास जागता है कि भविष्य उज्ज्वल है। इसलिए आइए इस दिवस पर संकल्प लें कि हम बच्चों के प्रति अपने व्यवहार में और अधिक संवेदनशीलता, अपनापन और करुणा लाएंगे। हम हर उस प्रयास का समर्थन करेंगे जो बच्चों को हिंसा और आक्रामकता से बचाने के लिए किया जा रहा है। साथियों, दुनिया की सबसे सुंदर ध्वनि किसी बच्चे की हंसी होती है। आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी बच्चे की मुस्कान भय और हिंसा के कारण न छीने। हर बच्चे को प्यार मिले, सुरक्षा मिले, शिक्षा मिले और सपने देखने का अधिकार मिले, यही आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का संदेश है। यही मानवता का धर्म है और यही हमारे अपनेपन की सबसे सुंदर पहचान है। और अब लीजिए सुनिए गुंजन कार्यक्रम का ये अगला गीत, साधना सरगम जतिन और साथियों के स्वर में। गीतकार हैं मजरूह और संगीत है जतिन ललित का, और फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: साथियों, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। साथियों, आज का युग डिजिटल युग है। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने दुनिया को हमारी हथेली मिला दिया है। कुछ वर्ष पहले तक लोग समाचार, मनोरंजन और जानकारी के लिए अखबार, रेडियो और टेलीविज़न पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया ने संचार के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे मंच युवाओं के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया

ने युवाओं को अभिव्यक्ति का नया मंच दिया है, लेकिन इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे जानकारी प्राप्त करना आसान हो गया है। युवा देश दुनिया की घटनाओं, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और रोजगार संबंधी अवसरों की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन कक्षाएं, शैक्षणिक वीडियो और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध सामग्री ने शिक्षा को आसान और सुलभ बना दिया है। कई युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, इस विषय में आगे और भी बातें करेंगे। फिलहाल लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म सौतन की बेटी का ये गीत। गीतकार हैं सावन कुमार और संगीतकार हैं वेद पाल।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: दोस्तों, सोशल मीडिया ने संवाद और संपर्क को सरल बनाया है। दूर रहने वाले मित्रों और रिश्तेदारों से जुड़े रहना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। किसी भी जरूरी सूचना को कुछ ही पलों में हजारों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। सामाजिक जागरूकता फैलाने और जनहित के मुद्दों पर लोगों को जोड़ने में भी सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी सामने आए हैं। कई युवा घंटों तक मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से समय की बर्बादी होती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो सकती है। साथियों, कई बार युवा वास्तविक जीवन के संबंधों की अपेक्षा आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली चमक दमक और दिखावे की संस्कृति भी युवाओं को प्रभावित करती है। दूसरों की सफलता, जीवन शैली और लोकप्रियता देखकर कुछ युवाओं में हीन भावना या अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो सकती है। इसके अलावा गलत जानकारी, अफवाहें और भ्रामक समाचार तेजी से फैलते हैं, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, इन सब से हमें बचना है और सीमित सोशल मीडिया का उपयोग करना है। और अब हम आपको सुना रहे हैं ये अगला गीत, अलका याग्निक की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है जतिन ललित ने, और फिल्म का नाम है दिल क्या करे।

साथियों, साइबर अपराध भी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। फर्जी खातों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए हमें डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करनी होगी। हम सोशल मीडिया का उपयोग संतुलित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से करें, उसे ज्ञान सीखने और सकारात्मक संवाद का माध्यम बनाने, न कि समय की बर्बादी का साधन। परिवार, विद्यालय और समाज की भी जिम्मेदारी है कि युवाओं को सोशल मीडिया के सही उपयोग के बारे में मार्गदर्शन दें। तो दोस्तों, हम इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म नगीना का गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: साथियों, अभी आप जुड़े हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से और आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। और इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में। साथियों, सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन है। ये न तो पूरी तरह अच्छा है और न ही पूरी तरह बुरा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग किस प्रकार करते हैं। अगर हम इसे सीखने, जागरूकता बढ़ाने और रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग करें तो ये हमारे विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। लेकिन यदि इसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग किया जाए तो इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है दोस्तों कि सोशल मीडिया का उपयोग विवेक, संयम और जिम्मेदारी के साथ किया जाए ताकि ये हमारे उज्जवल भविष्य का सहायक बन सके। और इस चर्चा के बाद अब लीजिए सुनिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण और इस गीत में आवाज़ दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

अभी आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन अब यहीं समाप्त होता है। तो मुझे यानी विजय को दीजिए अनुमति कार्यक्रम गुंजन से। नमस्कार।

0: सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब हम प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71 पार्षद, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की मतगणना इस समय चल रही है। मतों की गणना प्रदेश के 13 निर्धारित मतगणना केंद्रों में की जा रही है। मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए 395 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पहले ही हो चुकी है, इसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है।

0: कहा कि अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। इस बार बच्चों को इनके दोनों सेट एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही वितरण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले विद्यार्थियों तक यूनिफॉर्म पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है। दुर्ग जिलों में इपोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को संबंधित लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए 2 व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और इसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का आधार है। रायपुर में दूरदर्शन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों से चर्चा की। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरकों, जैविक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने किसानों से नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था की गई है तथा कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी रखी जा रही है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमना में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे। प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको बता दें मौसम की जानकारी। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान वर्षा 10.9 मिलीमीटर मापी गई। तो श्रोताओं, ये तो थी मौसम की जानकारी। और अब हम आपको बता दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी कार्यक्रम विवरण में।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे लोक गीतों का फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। सुबह 11:05 पर कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 12 बजे आप सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम चयन का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। दिन में 1:10 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आप सुनिएगा क्रम बातचीत, क्रम गुलदस्ता, क्रम घरेलू नुस्खे और कुछ गीत संगीत। दिन में 1:40 पर और रात 9:30 पर कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण समय होगा। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में युवा साथी आज सुनेंगे क्रम युवा सोच और क्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:05 पर कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी में सुनिएगा कुछ फिल्म संगीत। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोता और किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। इसमें आज सुनिएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और प्लास्टिक प्रदूषण सुविधा से संकट तक, इन विषयों पर सामयिक चर्चा। शाम 7:30 पर क्रम किसानवाड़ी में सुनिएगा क्रम आजकल, क्रम नया दौर, मंडी भाव, मौसम कर जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श और क्रम आज कर सवाल। रात 8 बजे सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का प्रसारण समय होगा। रात 10 बजे प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए लोक गीतों का फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुति सहायक हैं वशिष्ठ सिंह यादव और प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार।

0: गांवकर
1: जी,
2: कार्यक्रम गांवकर गीत में जम्मू श्रोता बनकर स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम गांवकर गीत। हेलो
3: हेलो,
2: कार्यक्रम गांवकर गीत में रवकर स्वागत है।
3: राम राम
2: राम राम।
3: प्रेम सुपरस्टार
2: प्रेम साहब जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और बताइए।
3: और तो सब बढ़िया हवे सर, मानसून का धीरे धीरे जेठ चलत है ना। और देखब कि अभी गर्मी के नौतपा चलत रही, तो कहीं कहीं जगह भयंकर बारिश हुई है ना। और हमारे तरफ तो बारिश नहीं हुई थी, खास करके शहर में बारिश हो रही। अभी तो मानसून गिर जाए कर बाद ही तैयारी है अभी कर रही है ना।
2: हो।
3: पानी गिर जाए तो फिर
2: पता चल ही
3: चल रही है। तो क्या है कि जेठ अभी दुई जेठ है ना।
2: अच्छा,
3: अभी तो अषाढ़ आए में अभी पूरा जुलाई में आई अषाढ़ बरखा लगा थे, लेट से चालू हुई।
2: अच्छा, तो चलिए मौसम के हिसाब से किसान मन ला चलना चाहिए। बिल्कुल राउर मन ला भी, और पर्यावरण के बचाए पर हम सब जन ला जागरूक रहना है। तो प्रेम साई जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: विजय सिद्धार की आवाज में कोई सभी गीत बजा दिया सर।
2: तो चलिए प्रेम साई जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
4: अमरैया महवे तुर बसेरा

0: हेलो।
1: राम राम भैया।
0: राम राम। कार्यक्रम गांव कर गीत में रह कर स्वागत है।
1: सुरेश कुमार सारथी बोला था भैया, कुर्मी पारा बेमे तरा ले।
0: सुरेश जी स्वागत है हमारे कार्यक्रम गांव कर गीत में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
0: और मौसम कैसे है?
1: मौसम है तो इसी वक्त भी गर्मी है भैया, शाम के अंधर आते हवा गरे के संग में हल्का सा बूंदा पानी पानी गिर जाते दिन हो गए तो थोड़ा से राहत मिल जाते भैया।
0: बढ़िया। तो अभी क्या तैयारी चलत है?
1: अब ये तो सब खेती किसानी तैयारी में लगे हैं भैया, कांटा खूटी के साफ सफाई अलग से जगह में जला के और जलाए के बाद फिर जोताई फंदाई ये सब काम चला थे भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया।
1: पानी कांजे गिरी तहा ले अब पेड़ पौधा घलो का अपन खेत के मेड़ मन में चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधा लगा देबो ताकि हरा भरा रहे भैया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कर है भैया वो लक्ष्मण मस्तूरिया के।
0: बिल्कुल। तो देखिए लक्ष्मण मस्तूरिया कर गाल मैं गीत सुनवा तो रे हमारे कार्यक्रम में फोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मन के पूरा परिवार आप मन के आकाशवाणी की यूनिट सारथी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई दिया।

0: हेलो।
1: हाँ भैया, नमस्कार।
0: नमस्कार। गांव कर गीत कार्यक्रम में रावकर स्वागत है।
1: जी भैया, योगेश जांगी बोला था, फिरवा बांधा में तरह ले।
0: योगेश जी स्वागत।

0: थे हमारे कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: और बताइए योगेश जी।
1: दे बढ़िया घरे मन दिया अभी।
0: बढ़िया ने।
1: हाँ
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहतन?
1: जी चेकर अपन पंचरा मिर्चा जी का आवाज में मिल जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: हाँ तो कोई भी बढ़िया गीत सुनवा दे।
0: तो चलिए योगेश जी रावकर पसंद कर मैं गीत सुनवाता हूँ। रोरे हमारे कार्यक्रम में फोन करें। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: राम राम भैया,
0: राम राम
1: अंबिकापुर राजकुमार ने ध्वनि बोल रंग दिया।
0: राजकुमार जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और बताइए हाल चाल।
1: हाल चाल तो ठीक ही ठाक है। विधवर कहते क्या हाल है भैया?
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रावण से बात हो जाती तो तबीयत ठीक हो जाते।
1: हाँ दादा, हम के इंतजार रहे कि कब मंगल है तो हमारे बातचीत की रिकॉर्डिंग हो देता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: थोड़ा सा गर्मी से राहत मिली से भैया।
0: हाँ थोड़ा सा रात तो मिली से।
1: लक्ष्मण मस्तूरिया के चाहे केदार यादव अगर कोई भी गाना सुनने के लिए भैया।
0: बिल्कुल राजकुमार जी, मैं राहुल कर पसंद कर गीतला सुनवाता हूँ और हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बस साथी मन के नाम लेते हैं, प्रेम
0: बिल्कुल ले ली
1: से राजभरे और मनी क्राम प्रजापति।
0: तो राहुल सब मन के पसंद पे मैं गीतला सुनवाता हूँ और हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।

महफोर के करे जाला देखाओ तो लकाओ विश्वासी के माया जोड़ा जोड़ देबे का विश्वासी के

0: कार्यक्रम गांव कर गीत में स्वागत है राउरकर।
1: धन्यवाद सर। मैं ग्राम पीपल रोड जिला मुंगेली से दीपेश वर्मा बोला था।
0: दीपेश जी स्वागत है हमारे कार्यक्रम गांव कर गीत में।
1: धन्यवाद सर।
0: और बताइए।
1: आसान चंग सर पानी गिरा थे, तभी भी पानी बारिश हुई थे फिर बंद हो गए। दोपहर में थोड़ा उमस बड़े घाम भी थे, लेकिन संजोती हुआ तो मौसम सुहाना हो जाते। तो और ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधा लगा के सोचबो, गांव में भी सब जागरूक करबो।
0: बिल्कुल
1: जिस प्रकार से गर्मी बढ़ा जात है गांव देहात में, देखा था ना मन बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गई से तरी।
0: बिल्कुल
1: तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाबो, पानी बचाबो, यही उद्देश्य लेके साल गांव में जागरूकता फैलाबो। गांव के स्कूल मन में भी हम जात रही थे, लड़का मन ला बतात रही थे, स्कूल के बाउंड्री मन में भी बहुत से वृक्ष लगाए हैं।
0: बहुत बढ़िया दीपेश जी फोन करें। आज कौन सा गीत सुनना चाहता हूँ तो केदार यादव करकाल में राउत के गीत ला सुनवात हूँ। और रोडे हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हाँ, गांव का गीतकार कर रहा हूँ।
0: गांव कर गीत कार्यक्रम में स्वागत है राहुलकर। नाम बताइए।
1: हाँ, धन्यवाद भैया। मैं मधुसूदन प्रजापति बोला था भैया, ग्राम तारकेश्वरपुर, विकास खंड प्रेम नगर, जिला सूरजपुर है भैया।
0: मधुसूदन जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और बताइए।
1: और तो एकदम ठीक है भैया, हाल चाल कहा बभी
0: तो मधुसूदन जी,
1: और
0: 5 जून के तो पर्यावरण दिवस है, तो का कार्यक्रम है ये धार?
1: तो देखा भैया, 5 जून के पर्यावरण दिवस है, तो इसमें तो हम हर साल प्रयास करते पेड़ पौधा लगाए के, और भैया आप मन के भी माध्यम ले जानकारी बताते रहते हैं भाई। कई बार से जो उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारी मन की बुलाए रहते, मन से जानकारी बताते हैं कि जो हमारे किसान भाई है गांव का, मतलब पेड़ पौधा कहाँ ले भेटाही, कौन विधि ले भेटाही, ये सब की भी जानकारी आप मन ले भेटाते रहते, तो बहुत अच्छा विषय में आप बात करें कि 5 जून के हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते, लगावत तो हमारे भविष्य भविष्य बर बढ़िया रही, हमें
0: बिल्कुल।
1: हवा मिली।
0: तो मधुसूदन जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: तो भैया आज सुना दिया, अगर भैया वंदना दत्ता के गाना भेटा जाएगा, उस समय जब हमन जब जुड़े नकाब पड़े उस समय कर बहुत खूब गाना बजत रहे।
0: तो मैं मधुसूदन जी देखा हूँ, यदि भेंट आई तो जरूर सुनवा हूँ। और कोई गीत?
1: तो अगर उधर नहीं भेटा ही तो भैया एक समय लाल प्रजापति होकर गाना बजा दी था।
0: बिल्कुल, समयलाल
1: हाँ,
0: प्रजापति कर गाना
1: लेकिन कोशिश
0: करूं। और मधुसूदन जी फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो
0: गांव घर गीत कार्यक्रम में राहुल स्वागत है।
1: जी सर नमस्ते। जय श्री राम
0: जय श्री राम।
1: सर। आज विजय सरदार की आवाज में सुना दिया
0: बिल्कुल,
1: कुछ गीत। राम
0: बिल्कुल। कौन बोला थी, नाम बताइए।
1: के निमित्त श्रोता बोला तो सर चंद्रभूषण प्रजापति का।
0: तो और सब बढ़िया।
1: हाँ सब बढ़िया सर। बहुत दिन के बाद बात हो रहा है सर।
0: हाँ भाई, देखिए अब राहुल मन बहुत दिन बाद फोन लगाते
1: जी। थोड़ा सा अंतराल थोड़ा व्यस्तता के कारण पिछड़ गए हैं सर।
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, काम बूता बहुत जरूरी है।
1: जी। कुछ दोस्त का मैंने नाम ले लिया सर।
0: बिल्कुल
1: कुलेश्वर अजाड़े, पूरन सिंह बंजारा, मधुसूदन प्रजापति, मानिक राम प्रजापति, अमरेश राम सर।
0: बिल्कुल। तो राहुल सब जन के पसंद पे मैं विजय सिंह डारकर गाले गीत ला सुनवाता हूँ। रो रहे हमारे
1: जी
0: कार्यक्रम में
1: सर
0: फोन करें, बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद।
2: कोई नहीं।

0: हेलो, कार्यक्रम गांवकर गीत में स्वागत है राउरकर।
1: भैया जय राम। अशोक
0: जय राम।
1: कुमार साहू बोला था भैया जी।
0: स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अशोक जी बताइए, हाल चाल बताइए। हाँ
1: रमा चौक लोहारी डीहा जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से बोला था भैया। बहुत दिनों के बाद फोन लगा है, कम से कम 2-4 महीना तो हो ही गया होगा।
0: तो भाई, काम बूता में आदमी थोड़ा व्यस्त रहते तो, लेकिन जुड़े हैं
1: नहीं
0: ना।
1: भैया वो काहे अब प्रयास हेलो करते रहन गा सुनते रहन कार्यक्रम ला तो हम तो निमेश तो फिर काहे अब श्रोता मन के हमरो संख्या मन बाढ़ गए गा तब काहे अब सभी जन श्रोता लाइन में लगे रहते तो
0: हाँ ठीक बोला था
1: काहे व्यस्त व्यस्त बता रहे थे। अब कभी कभी ऐसे है जन लग गए ऐसे ताए अब शिकारी ताए भैया अब तीर कहूँ मारा था ना कहूँ अब तीर में लग गए अब नहीं लगी तब फिर
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहते?
1: ममता चंद्रा सर और कुलेश्वर तामरा कार के आवाज में रही भैया आज केवल गीत
0: बिल्कुल
1: सुनना रहा भैया आज।
0: बिल्कुल, तो ये गीत ला मैं सुनवाता हूँ। रोरे हमारे कार्यक्रम में फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो खास पसंद है भैया मोर ऋषि सेन जी भैया के, चंदूलाल सिंह रावल जी के है, और हमारा अंबागढ़ चौकीले ओम प्रकाश मस्या भैया के है, हमारे नजदीक के श्रोता है झनाऊ कन्या दमो जिला बालाघाट के धुरवाराम साहू जी है, इन सबों श्रोता मन के पसंद में सुनना रहा भैया गीत ला।
0: तो चलिए अशोक जी, मैं

0: हेलो।
1: गांव कर गीत कार्यक्रम में राहुल का स्वागत है।
0: हाँ भैया, जयराम।
1: जय राम।
0: मैं ग्राम पंचायत खोलना उदयपुर ले जीवधन सिंह टकर बोल रहा हूँ भैया।
1: जीवधन जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और बताइए हाल चाल।
0: सब बढ़िया बढ़िया भैया। अभी तो मौसम बने से पानी आए वकीदा माया हवा भैया चला था है कि नहीं।
1: तो जीवधन जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: तो आज मुके भैया सुना दी है आज कुलेश्वर ताम्रकार और

0: जनगीत के साथ रावरमन से कार्यक्रम से विदा ले जाए। रावरमन से फिर भेंट हो ही। जय जोहार, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुति सहायक थे वशिष्ठ सिंह यादव और प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और मीडियम एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। हम आपको बता दें, सुबह 11:05 पर श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम चयन का प्रसारण समय होगा। दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम घर आंगन में सुनिएगा क्रम बातचीत, क्रम गुलदस्ता और क्रम घरेलू नुस्खे और कुछ गीत संगीत। दोपहर 1:40 पर श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वे इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को

0: प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज मिजोरम म्यांमार सीमा पर स्थित चम्फाई कस्बे के 9 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी ने बताया कि ये छापेमारी देश में बड़े पैमाने पर अवैध बर्मी सुपारी की तस्करी करने वाले एक संगठित सीमा पार नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए की जा रही है। निदेशालय ने बताया कि इस अवैध नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। इसराइल और लेबनान ने संघर्ष विराम को फिर से लागू करने तथा लेबनान के भीतर कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जहां हिजबुल्ला लड़ाकों की मौजूदगी नहीं होगी। अमरीका की मध्यस्थता में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि संघर्ष विराम तभी प्रभावी रहेगा जब हिजबुल्ला पूरी तरह से गोलीबारी बंद करे और लितानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से अपने सभी लड़ाकों को हटाए। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मड़गांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, शबनम।

मरते दम तक। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय, वाणी मनीष, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, साइमा खान, मुश्तबा, आफिया, रऊफ भाई और शहीद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से

हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम होता है आपकी फरमाइशों पर आधारित, जिसे आप भेजते हैं हम तक पोस्ट कार्ड के जरिए। तो कागज़ और कलम ज़रूर तैयार रखिएगा, क्योंकि कागज़ और कलम आपके पास जब होगा तो आप हमारा बताया हुआ पता भी नोट कर पाएंगे। हम ये बात उन श्रोताओं के लिए कह रहे हैं जो शायद कार्यक्रम से पहली बार जुड़ रहे हों। तो कागज़ और कलम ज़रूर तैयार रखिएगा और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर।

लता मंगेशकर और अमित कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म लव स्टोरी में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और अब आप सुनेंगे फिल्म दोस्ताना से ये गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की। और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। बेमेतरा से सुरेश सारथी पूर्णिमा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू वैद, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन, वंशिका और इनके परिवार के सभी सदस्य।

0: कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। आपकी पसंद यानी जहां फरमाइशें आपकी होती हैं और एहसास भी आपके होते हैं, आपके पत्रों की खुशबू और आपके एहसासों का सुरीला संगम है ये कार्यक्रम। सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर और इस वक्त पेश हो रहा है कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी फरमाइशों के साथ शबनम।

आपके दीवाने। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम आपकी पसंद में अब आप सुनेंगे फिल्म अमर अकबर एंथोनी से ये गीत। शब्द रचना एक बार फिर आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर की। और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या प्रियंका, चंद्रप्रभा वाडोदे। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंदर सेन और यहीं से खुशी रौनक सेन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अमरपुर पिंडरा से श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दिशा श्रीवास्तव। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा। झूलेलाल चौक तिल्दा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान,

0: और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ शबनम। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में गीत आपके, जज्बात आपके और फरमाइशें भी आपकी, और इन सुरेले पलों में सजती हुई ये हसीन जो दोपहरिया है वो सिर्फ आपकी। आपकी पसंद का हर एक नगमा मानो बीते हुए कल की किसी खूबसूरत किताब का एक पन्ना खोल देता है। देखिए ना, कितने खूबसूरत खूबसूरत गीत शामिल होते चले जा रहे हैं आपकी फरमाइशों में, जो कि सदाबहार एक से बढ़कर एक गीत हैं। आइए सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दो दिलों की दास्तां, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि आप कागज़ और कलम तैयार रखकर बैठिएगा, क्योंकि हम कार्यक्रम के दौरान ही कार्यक्रम का पता भी ज़रूर बताते हैं ताकि हम तक वे श्रोता भी अपनी फरमाइशें पहुँचा सकें आसानी से जो शायद ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं। तो नोट कर लीजिए हमारा पता। आपको लेना है एक पोस्ट कार्ड और उस पर सबसे पहले लिखना है कार्यक्रम आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, आकाशवाणी अंबिकापुर, पिन है 497001। तो आप भी हमें अपनी फरमाइशें पोस्ट कार्ड के जरिए भेज सकते हैं और आप भी अपनी फरमाइशें रेडियो में सुन सकते हैं। तो रहिए न मन मसोस कर, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइशें दिल खोलकर और सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर।

0: ये गीत है फिल्म अब्दुल्ला से। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत आर डी बर्मन का, आवाज किशोर कुमार की। और इस गीत से पहले आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म दो दिलों की दास्तान से गीत। और इन दोनों ही गीतों की मिलीजुली फरमाइश कुछ इस तरह है। धरसीमा से छेदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है।
1: वाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना, तहसीलदारों ने हड़ताल स्थगित की, आज से काम पर लौटे। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71 पार्षद, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की मतगणना इस समय चल रही है। मतों की गणना प्रदेश के 13 निर्धारित मतगणना केंद्रों में की जा रही है। मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए 395 अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पहले ही हो चुकी है, इसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। शासन स्तर पर हुई सकारात्मक चर्चा, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज से नियमित काम पर लौटेंगे। गौरतलब है कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा के मामले प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जताते हुए सामूहिक अवकाश पर थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। इस बार बच्चों को इसके दोनों सेट एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही वितरण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। 16 जून से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से पहले विद्यार्थियों तक यूनिफॉर्म पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है। दुर्ग जिले में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को संबंधित लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए 2 व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और उसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय

मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कल 5 जून को रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय पर संगोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल गौरेला पिंडा मरवाही जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना। तहसीलदारों ने हड़ताल स्थगित की, आज से काम पर लौटे। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले में मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत

0: नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजी जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है
0: जी
1: और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
0: जी
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
0: जी
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
0: जी
1: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
0: जी
1: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजी जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
0: बिल्कुल याद है।
1: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
0: जी
1: वो खिसकने लगते हैं?
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
0: जी
1: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET

0: एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
7: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
6: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
7: जी वही।
5: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
6: अच्छा।
7: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
6: और
5: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
6: हाँ, बोलो।
7: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
6: बिल्कुल।
5: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
6: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
7: 5000 वर्ष पहले?
6: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
5: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
6: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
7: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
6: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
7: अच्छा।
6: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
7: जैसे?
6: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
7: वैदिक समूह?
6: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
7: भरत?
5: भरत नाम तो हमने सुना है।
6: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।

0: गया।
1: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
0: हाँ।
1: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
2: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
0: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
1: वो क्या सर?
0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
2: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है,
1: भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
1: हाँ, ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
1: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
1: हिंदू।
0: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
1: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
2: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
1: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ।
2: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
2: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
1: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ?
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा।
2: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
1: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।

0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओह
0: हाँ,
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने

0: उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्तान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्तान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसे लगी आपको अपने प्यारे देश
3: भारत अर्थात इंडिया
2: के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है
3: भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
8: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
9: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
8: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
9: हाँ पूछो बेटा।
8: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
9: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
8: लेकिन माँ।
9: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
8: जी
9: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
8: अच्छा माँ, ये लो माँ।
9: ला।
7: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
8: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
9: क्या मिल गया
8: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
9: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
8: मुझे मिल गया।
7: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
9: जोसेफ क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
8: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
7: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
8: स्टीफन स्टीफन माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
9: धुआं?
8: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
9: हा?

0: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है? बताओ बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
1: कुछ भी तो नहीं,
2: कुछ भी तो नहीं है।
0: ओ नहीं स्टीफन, नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
2: वो तो है, मगर
0: इसका मतलब ये हुआ स्टीफन, कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
2: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
0: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
2: हाँ।
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें, तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
2: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
0: ठीक है, आओ मेरे साथ।
1: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे अरे
5: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
6: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
5: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: आओ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
7: ना जाने क्या करेंगे,
5: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती। अच्छा मजा आ गया,
7: लगता है कुछ हो गया है।
5: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
6: भाई साहब हट जाइए। आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
5: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
6: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
5: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
6: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
5: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, हाँ स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
6: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
5: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
6: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
5: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
6: बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
5: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
6: वो देखो वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
5: अरे हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल

0: बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। अब पेश है एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन।

कार्यक्रम चयन सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार आदाब, आज शबनम की ओर से। श्रोताओं, कार्यक्रम चयन होता है एक ही शब्द पर आधारित, और हम चुनकर लाते हैं एक ऐसा खास शब्द जिस पर आधारित कुछ फिल्मी गीत आपको सुनवाते हैं। तो आज का खास शब्द है मुलाकात। मुलाकात केवल दो व्यक्तियों का आमने सामने आ जाना नहीं होता, बल्कि दो भावनाओं, दो अनुभवों और दो हृदयों का एक सुंदर संगम होता है। कुछ मुलाकातें क्षण भर की होती हैं, किंतु उनकी स्मृतियां जीवन भर साथ चलती हैं। वहीं कुछ मुलाकातें ऐसी भी होती हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देती है। कभी किसी मुस्कुराते चेहरे से हुई मुलाकात मन को प्रसन्नता से भर देती है, तो कभी किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई भेंट जीवन का नया दृष्टिकोण ही दे जाती है। कुछ लोग हमारे जीवन में अतिथि बनकर आते हैं और कुछ अपनी आत्मीयता से हमारी स्मृतियों का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। मुलाकातों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे हमें स्वयं से भी परिचित कराती हैं। जब हम किसी के विचार सुनते हैं, किसी के अनुभवों को समझते हैं और किसी की संवेदनाओं को महसूस करते हैं, तो हमारे अपने विचारों का भी विस्तार होता है। यही कारण है कि सार्थक मुलाकातें जीवन को समृद्ध बनाती हैं, और कभी कभी तो मुलाकातें बहाना ही बन जाती हैं।

तो श्रोताओं, है ना मुलाकात कहीं ना कहीं बहाना। देखिए ना, कार्यक्रम चयन के बहाने से ही हमारी आपकी मुलाकात तो हो रही है। जी हाँ, आज के चयन कार्यक्रम में खास शब्द है मुलाकात। कभी कभी महीनों या वर्षों बाद होने वाली एक मुलाकात पुराने दिनों की मधुर स्मृतियों को फिर से ताज़ा कर देती हैं। बीता हुआ समय मानो फिर से आज में लौट आता है और हृदय उन पलों को पुनः जीने लगता है जिन्हें उसने कभी बहुत संजो कर रखा था। मुलाकात का सौंदर्य शब्दों में नहीं, भावनाओं में छिपा होता है। कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति आत्मीयता का अनुभव करा देती है। वहीं कुछ मुलाकातें बिना किसी विशेष बातचीत के भी मन पर गहरी छाप छोड़ जाती है। इसलिए जीवन में जब भी किसी से मुलाकात हो, उसे केवल एक औपचारिक भेंट न समझें। हो सकता है वही मुलाकात आपको कोई नई प्रेरणा दे, कोई नई सीख दे या जीवन का कोई नया अर्थ ही समझा दे।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। और आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं शबनम। आज का खास शब्द है दोस्तों मुलाकात। जब रास्ते के मोड़ पर चलते चलते अचानक से ब्रेक लगता है, पेड़ों की ठंडी छांव मिलती है, तब मन के किसी कोने में एक आवाज़ सी आती है कि काश इस हसीन मोड़ पर कोई अपना मिल जाता। जी हाँ, आज चयन के इस खूबसूरत पड़ाव पर हम मुलाकात शब्द के ज़रिए बहुत सी बातें आपसे कर रहे हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर से हम सेकेंड में कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो मुलाकात आमने सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में झांककर चेहरे के उतार चढ़ाव को देखकर होने वाली सच्ची मुलाकात है ना, वो कहीं इस डिजिटल शोर में खो गई है। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो महज चंद मिनटों की होती हैं, मगर उनकी खुशबू, उनका असर हमारे दिल पर ताउम्र के लिए ताज़ा रह जाता है।

आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी अंबिकापुर मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। इस वक्त घड़ी की सुइयां बजा रही हैं 12:50 और 16 सेकेंड और कार्यक्रम चल रहा है चयन। मैं हूं शबनम और कार्यक्रम चयन में आज का खास शब्द है मुलाकात। हर मुलाकात को सम्मान और आत्मीयता के साथ जीना चाहिए। कौन जाने कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में नई प्रेरणा का स्रोत बन जाए और कौन सी भेंट हमारी सोच का नया विस्तार दे जाए, क्योंकि जीवन का सौंदर्य केवल जीने में नहीं बल्कि मिलने, समझने और जुड़ने में भी है। क्योंकि मुलाकातें समय की पुस्तक की वे स्वर्णिम पृष्ठ हैं जिन्हें हृदय बार बार पढ़ना चाहता है, और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो ख़त्म होकर भी कभी ख़त्म नहीं होती।

दोस्तों, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनसे मिलकर लगता है कि मानो बरसों की थकान एक पल में मिट गई हो, जहां लफ्ज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती, बस एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेना ही सबसे बड़ी गुफ्तगू की सौगात बन जाती है। कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, वो तो आपस में मिलने और जज्बातों को बांटने से ज़िंदा रहते हैं। तो आज इस सुरीली दोपहर में अपनी ज़िंदगी की रफ़्तार को थोड़ा सा धीमा कीजिए, अपने किसी पुराने अजीज़ दोस्त को याद कीजिए और अगर मुमकिन हो तो मुलाकात भी ज़रूर कीजिए।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम चयन से बस हम विदा लेते हैं। दोपहर की ये सभा जारी रहेगी दिन के 3 बजे तक। अभी आप सुन रहे थे एक ही शब्द पर आधारित कार्यक्रम चयन। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन का 1 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
2: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

0: कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है खेती की बात का पुनः प्रसारण। सामयिक जानकारी का विषय है मुनगा की खेती लाभकारी।
2: मुनगा की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद। मुनगा एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय सब्जी है। इसे ड्रमस्टिक मुनगा, सहजन, सेंजना, गनीगना, मुलाकाई, मुरंगी या मुरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुलायम पत्तियां अपरिपक्व और अर्ध परिपक्व फल खाए जाते हैं। इसमें औषधीय गुण भी विद्यमान होते हैं। यह एक अलग विशिष्ट और लुभावने स्वाद के कारण प्रसिद्ध है। मुनगा के वृक्ष का फल, पत्ती, फूल और तना सभी उपयोग में लाया जाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फल, फूल, पत्तियां और पौधों का प्रयोग पानी शुद्ध करने में, गोंद बनाने में, हरी खाद बनाने में, पशुओं का चारा बनाने में किया जाता है। उन्नतशील किस्में PKM1, यह प्रजाति पूरे भारत में बहुत प्रचलित है। फलियां लंबी 65 से 70 सेंटीमीटर, अधिक गूदेदार, हरे रंग की और अधिक पैदावार वाली प्रजाति है। रोपण के 90 से 100 दिन के बाद फूल देना आरंभ करती है। इसकी लाभदायक फसल 3 से 4 वर्षों तक ली जा सकती है। PKM2, यह लंबी फल वाली प्रजाति है। फलियां अधिक लंबी होने से विपणन में कुछ कठिनाई आती है। इसकी फलियां हरे रंग की 45 से 75 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और प्रत्येक पौधे में 300 से 400 फलियां प्राप्त की जा सकती हैं। इसकी लाभदायक फसल 3 से 4 वर्षों तक ली जा सकती है। Coimbatore 1, इसकी फलियां हरे रंग 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी और 60 से 80 ग्राम वजन वाली होती हैं। प्रत्येक पौधे से 400 से 600 फलियां प्राप्त होती हैं। इसकी सफलतापूर्वक खेती 8 से 10 वर्षों तक ली जा सकती है। Coimbatore 2, इसकी फलियां हरे रंग 25 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और प्रत्येक पौधे से 250 से 300 फलियां प्राप्त होती हैं। इसकी सफलतापूर्वक खेती 3 से 4 वर्षों तक ली जा सकती है। भूमि और जलवायु, इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में होती है। रेतीली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.8 से 8 के बीच हो उपयुक्त पाई गई है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद की जुताई देसी हल से करनी चाहिए ताकि मिट्टी में वायु का संचार भली भांति हो एवं जल निकास के लिए नाली और मेड़ बन जाए। यह उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण जलवायु की फसल है। यह पौधा जल भराव और पाला पड़ने वाले क्षेत्रों में नहीं लगाया जा सकता है। इसकी अच्छी बढ़वार 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। बीज की बुआई का समय, पौधशाला में इनके बीजों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। बीज को पॉलीथीन की 15x10 सेंटीमीटर आकार की 200 गेज मोटी थैलियों में कंपोस्ट, मृदा, रेत 2:1:1 में 24 घंटे से पानी में भिगोए हुए 2-2 बीजों की बुआई कर देते हैं। ध्यान रहे कि पॉलीथीन की थैलियों की पेंदी में 2 से 3 छिद्र अवश्य हों। बीजों की बुआई के उपरांत थैलियों को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां धूप हो। बीज की मात्रा, बहुवर्षीय प्रजातियों में 1 हेक्टेयर खेत के लिए 1500 से 1600 कटिंग की आवश्यकता पड़ती है और 1 वर्षीय किस्मों के लिए 2 से 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पड़ती है। बीज की बुआई, पौधरोपण की दूरी, 45x45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं और दोनों ओर 2.5 मीटर दूरी रखी जाती है।

0: 15 किलो कंपोस्ट या गोबर खाद प्रति गड्ढे में डालते हैं। बीज की बुआई से पूर्व 18 से 24 घंटे पानी में डुबोकर रखना चाहिए। बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा और 1 या 2 बीज प्रति गड्ढे बोते हैं। पौधशाला में जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तब इन्हें मुख्य खेत में रोपित किया जाता है। रोपण कतार से कतार 2.5 मीटर और पौधा से पौधा 2 मीटर करना चाहिए। बहुवर्षीय प्रजातियों से 1 वर्ष पुरानी शाखा लेकर जो कि 1 से 1.5 मीटर लंबी और 5 से 6.5 सेंटीमीटर व्यास की हो कर्तन लगाने के लिए उपयुक्त होती है। खेत में लगाते समय कटिंग का 30 से 50 सेंटीमीटर भाग मिट्टी में दबा देना चाहिए और शेष भाग जमीन के ऊपर रखना चाहिए। कटिंग लगाने के बाद ऊपरी सिरे पर कच्चा गोबर की टोपी अवश्य पहना देवें ताकि ऊपरी हिस्से से नमी उड़ने न पावे। कटिंग लगाने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें।
1: मुनगा की खेती लाभकारी, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे सामायिक जानकारी खेती की बात के अंतर्गत। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। बहनों के लिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार सखियों, घर आंगन में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे ढेर सारी बातें करने आपके साथ मैं हूँ चंदा श्रीवास्तव। बहनों, धरती माँ की प्यारी गोद, हरियाली का सुंदर बोध, पेड़ पौधे हैं जीवन दाता, इनसे ही है जग मुस्काता। मत करो तुम इन पर प्रहार, इनसे ही है सपने हजार, जल जंगल और यही जमीन, इनसे सजती धरती रंगीन। इन्हीं चंद पंक्तियों के माध्यम से आज हम आपसे बातें करेंगे सखियों, एक ऐसे विषय की जो केवल एक देश का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे मानव जीवन का आधार है। और ये खास विषय है पर्यावरण का, जिससे कि हम सभी सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। और इसलिए पर्यावरण और प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ही कल यानी 5 जून को वैश्विक स्तर पर हम सभी मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। जानते हैं इसकी शुरुआत के बारे में। दरअसल 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए ही इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। और फिर 1973 में इसे पहली बार मनाया भी गया और तब से ही हम संकल्पित हैं हर वर्ष इसके लिए। श्रोताओं, पर्यावरण केवल पेड़ पौधों का नाम नहीं, हमारे आसपास की दुनिया है ये। हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, पशु पक्षी, ये सभी मिलकर पर्यावरण बनाते हैं जिनसे हमारा दिन, हमारा जीवन चलता है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, जल का दुरुपयोग, प्लास्टिक का बहुत अधिक उपयोग, ये सभी हमारे पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने भी तो महसूस किया होगा कि पहले की तुलना में अब गर्मी कितनी बढ़ गई है, बारिश का समय भी बदल गया है और शुद्ध हवा, जी हाँ, शुद्ध हवा मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये सब पर्यावरण असंतुलन के ही संकेत हैं। इसलिए देखिए, समझदारी इसी में है कि हम इन इशारों को समय रहते समझ लें और अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाएं, तो हम अपने पर्यावरण को संवारने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी उचित देखभाल भी करें। पानी और बिजली की भरपूर बचत भी ज़रूरी है। कितना अच्छा होगा ना अगर हम प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के बैग्स का इस्तेमाल करें। अपने आसपास सफाई रखें, नदी, तालाब और जो दूसरे जल के स्रोत हैं उनमें कचरा बिल्कुल ना डालें। पशु पक्षी और जंगली जीवों को भी आज़ादी से जीने दें।

श्रोताओं देखिए ना, प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के कितना कुछ दे रही है। स्वच्छ हवा, जल, भोजन, मिट्टी और इन सबसे बढ़कर खूबसूरत जीवन यानी हमारी सांसें। इसलिए हमारा भी तो ये कर्तव्य है ना कि हम अपनी प्रकृति का सम्मान करें, उसे संवारें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का उपहार छोड़कर जाएं। बुजुर्गों ने भी कहा है कि पेड़ है तो जीवन है, धरती की यही है पहचान, पर्यावरण को जो बचाए वही है सच्चा इंसान। और भाई, सच्चा इंसान हम सभी को बनना होगा। तो आइए विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हर परिस्थिति में हम अपनी प्रकृति का, अपनी वसुंधरा का ख्याल रखेंगे, उसे कैनवास पर खींची गई एक खूबसूरत तस्वीर की तरह बनाएंगे ताकि पूरा विश्व इसके चित्रकार की चर्चा करे और हमें फक्र हो अपनी उपलब्धि पर।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन।

0: क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
0: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
2: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
0: वो कहाँ है?
2: मिठाई।
3: आरबीआई कहता है,
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: सखियों देखिए, आज घर आंगन में हम आपसे ढेरों बातें कर रहे हैं पर्यावरण सजाने और संवारने की, और इसलिए हम अपने घर आंगन में भी सजाए रखते हैं गुलदस्ता क्रम। आज है गुरुवार और आज के गुलदस्ता क्रम में आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। इस कहानी पाठ को हमारे साथ लेकर आ रही हैं श्रीमती श्वेता शर्मा जी, और आज उनकी कहानी का शीर्षक है बदलते रिश्तों का आंगन। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। नमस्कार सखियों, आज के इस गुलदस्ता क्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सखियों, आज गुलदस्ता में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही मार्मिक कहानी, और ये कहानी हमारे साथ आपसे साझा कर रही है एक बहुत प्यारी सी सखी हमारे साथ हैं। आप हैं श्रीमती श्वेता शर्मा, और इससे पहले कि वो अपनी कहानी आपसे साझा करें, आइए श्वेता जी से कुछ बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आज के हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार।
6: नमस्कार सखियों।
5: श्वेता जी देखिए, बहुत अच्छी आपकी ये कहानी है, लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी को हमसे साझा करें, मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि इस कहानी को लिखते समय, या कह सकते हैं कि लिखने से पहले, आपके मन में क्या विचार थे, क्या सोचकर आपने इस कहानी को लिखा है?
6: ये कहानी मैंने आधुनिकता, पारिवारिक परंपरा में, सामाजिक परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी के साथ परिवार के सभी लोगों का सम्मान करते हुए आपसी सामंजस्य बनाए रखना, इन सभी बिंदुओं के साथ मैंने इस कहानी को लिखने का प्रयास किया है।
5: चलिए, बहुत अच्छे भाव हैं आपके मन में, और अब सुनते हैं आपसे ये कहानी।
6: सखियों, मेरी कहानी का शीर्षक है बदलते रिश्तों का आंगन। गांव और शहर के बीच बसे एक छोटे कस्बे में शारदा देवी का बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। परिवार की मुखिया दादी कमला थी, जिनकी उम्र 80 वर्ष के आसपास थी। उनके पुत्र मोहन चाचा और शारदा देवी घर के बड़े निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। शारदा देवी का बेटा रवि शहर की एक निजी कंपनी में कार्यरत था। उस समय पहले ही उसकी शादी निशा से हुई। निशा उच्च शिक्षित, आत्मनिर्भर और एक निजी बैंक में अधिकारी थी। उसके विचार आधुनिक थे। वह महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत निर्णय लेने के अधिकार और आत्मनिर्भर जीवन की पक्षधर थी। परिवार में रवि की छोटी बहन रिया भी, जो विश्वविद्यालय में पढ़ रही। निशा की घनिष्ठ सहेली सोनल अक्सर उससे मिलने आती रहती। शादी के शुरुआती दिनों में घर का वातावरण उत्सव जैसा था। दादी निशा बहू के आने से बहुत प्रसन्न थी। गांव की महिलाएं मंगल गीत गाने आती थीं।

निशा मुस्कुराकर सबका सम्मान करती, लेकिन धीरे धीरे उसके और शारदा देवी के विचारों का अंतर सामने आने लगा। शारदा देवी का मानना था कि बहू को घर की परंपराओं के अनुसार चलना चाहिए, उनके लिए परिवार सबसे पहले था। दूसरी ओर निशा का विश्वास था कि महिला की अपनी पहचान, आजीविका, स्वतंत्र जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक सुबह शारदा देवी ने देखा कि निशा देर से उठती है। उन्होंने कहा, बहू हमारे घर में सूरज निकलने से पहले उठने की परंपरा है। निशा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी रात देर तक बैंक से संबंधित कुछ काम कर रही थी, यदि आराम नहीं करूँगी तो काम पर असर पड़ेगा। शारदा देवी को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि बहू घर की जिम्मेदारियों से बच रही है। वहीं निशा को लगा कि उसकी मेहनत और पेशेवर जीवन को महत्व नहीं दिया जा रहा। समय बीतता गया, निशा का वेतन रवि से भी अधिक था। उसे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पर गर्व था। वह मानती थी कि जब महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। रिया भी अपनी भाभी से प्रभावित थी। वह कहती

भाभी, मैं भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। निशा उसे प्रोत्साहित करती, बिल्कुल लड़की को आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। शारदा देवी यह सुनकर प्रसन्न भी होती और चिंतित भी। उन्हें लगता था कि नई पीढ़ी स्वतंत्रता को जिम्मेदारी से अधिक महत्व देने लगी है। एक दिन निशा की सहेली सोनल घर आई। बातचीत के दौरान उसने कहा, निशा तुम इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी संयुक्त परिवार में रह रही हो, अलग घर ले लो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। ये विचार निशा के मन में बैठ गया। उधर परिवार के रिश्तों में भी बदलाव आ रहा। पहले त्योहार पर सब मिलकर तैयारी करते थे, अब बाजार में तैयार सामान खरीदना आसान हो। होली पर दादी कमला बोली, पहले घर में गुजिया बनती, बच्चे साथ बैठते, हंसी ठिठोली होती। ईशा ने कहा, दादी आजकल समय कहाँ है, बाजार में सब मिल जाता है। दादी ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि सुविधा ने आत्मीयता की जगह ले ली है। होली के अवसर पर गांव की महिलाएं फाग गा रही थीं। गीत की धुन पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन परिवार के सदस्य अपने अपने मोबाइल और कामों में व्यस्त थे। दादी कमला को लगा जैसे गीत तो वही है पर सुनने वाले बदल गए। कुछ महीनों बाद निशा ने रवि से कहा, हमें अलग घर ले लेना चाहिए। रवि चौंक गया, क्यों, क्या कमी है यहाँ? निशा बोली, कमी नहीं है लेकिन मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, हर बात पर सलाह और हस्तक्षेप अच्छा नहीं लग। रवि ने समझाया, माँ ने बहुत संघर्ष करके हमें बड़ा किया है, उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन निशा अपने निर्णय पर अडिग रही। धीरे धीरे उसने रवि पर अलग रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। यह दबाव खुला नहीं था लेकिन उसकी बातों, नाराजगी और व्यवहार में दिखाई देने लगा। रिया ने एक दिन अपने भाई से कहा, भैया परिवार टूटना आसान है, जोड़ना कठिन। रवि असमंजस में था। एक और माँ का त्याग, दूसरी और पत्नी की इच्छाएं, इसी बीच शारदा देवी की तबीयत खराब रहने लगी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था, घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ गईं। निशा को लगने लगा कि नौकरी के साथ इतनी जिम्मेदारी निभाना कठिन है। एक दिन उसने कहा, मैं बैंक का काम भी करूं और घर भी संभालूं, यह संभव नहीं है। शारदा देवी ने कहा, परिवार में सबको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। निशा को यह बात उपदेश जैसी लगी। उसने महसूस किया कि उसकी स्वतंत्रता पर बोझ डाला जा रहा। वहीं शारदा देवी को लगा कि नई पीढ़ी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। धीरे धीरे रिश्तों में सम्मान भी कम होने लगा। पहले मतभेद होने पर भी संवाद बना रहता था लेकिन अब छोटी छोटी बातें विवाद का रूप लेने लगी। सोनल अक्सर निशा को समझाती, तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, दूसरों के लिए खुद को मत बदलो। निशा के मन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार और मजबूत होता गया। वह मानने लगी कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। कुछ समय बाद रवि और निशा अलग मकान में रहने लगे। नए घर में आधुनिक सुविधाएं थी। शुरुआत में निशा बहुत खुश थी, उसे लगा कि अब वह पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास होने लगा कि स्वतंत्रता के साथ अकेलापन भी आया है। त्योहारों पर घर सूना लगा। दीपावली आई तो बाजार जगमगा रहा। निशा ने सब कुछ खरीदा लेकिन जब पूजा के समय घर में केवल वह और रवि थे तो उसे पुराना आंगन याद आने लगा। उसे याद आया कि दादी कमला दीपावली पर गीत गाती थी, उस समय पूरा परिवार एक साथ बैठता था। अब सब कुछ था पर वह आत्मीयता नहीं। एक दिन निशा अचानक बीमार पड़ गई। रवि कार्यालय में तब सबसे पहले शारदा देवी ही वहाँ पहुँची। उन्होंने बहू की सेवा की, खाना बनाया और रात भर उसके पास बैठी। निशा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उधर शारदा देवी ने भी महसूस किया कि नई पीढ़ी की महिलाएं केवल स्वार्थी नहीं हैं, वे अपने सपनों और पहचान के लिए संघर्ष कर रही। समस्या स्वतंत्रता की नहीं बल्कि संवाद की कमी की है। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार दादी कमला के जन्मदिन पर इकट्ठा हुआ। दादी ने सबको पास बुलाकर कहा, समय बदलता है, बेटियाँ पढ़ें, आगे बढ़ें, नौकरी करें, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि स्वतंत्रता ही रिश्तों से बड़ी हो जाए तो मनुष्य अकेला रह जाता है, और यदि परंपरा इतनी कठोर हो जाए कि नई पीढ़ी का दम घुटने लगे तो परिवार टूट जाता है। उनकी बातें सबके मन को छू गईं। निशा ने शारदा देवी का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, माँ जी मैंने शायद स्वतंत्रता को ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मान लिया था, मुझे क्षमा करें। शारदा देवी मुस्कुराई और कहा, मैंने शायद परंपराओं को ही अंतिम सत्य समझ लिया था। रवि ने दोनों की ओर देखा और कहा, शायद परिवार का भविष्य इसी संतुलन

0: हैं। उस दिन के बाद परिवार में कई बातें बदली। निशा ने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन परिवार के लिए समय निकालना शुरू किया। शारदा देवी ने भी बहू के निर्णयों का सम्मान करना सीखा। रिया ने अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और पारिवारिक मूल्यों दोनों को साथ रखने का संकल्प लिया। धीरे धीरे परिवार में फिर से आत्मीयता लौटने लगी, रिश्तों के लिए जगह भी बनने लगी। सभी ने समझ लिया कि आर्थिक स्वतंत्रता के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी आवश्यक है, परंतु मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जी सकता। परिवार, सम्मान, जिम्मेदारी, अपनापन भी जीवन के उतने ही महत्वपूर्ण आधार हैं। दादी अक्सर कहा करती, घर ईंट पत्थर से नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट से बनता है। धन्यवाद।
1: और सखियों, इस प्यारी सी कहानी ने हमें सिखाया कि संवाद, अपनापन और आपसी समझदारी ही हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आइए इन्हीं भावनाओं को पिरोता हुआ सुनते हैं एक गीत।

और इस प्यारे से गीत के बाद अब आपको इंतज़ार होगा कुछ खास घरेलू टिप्स का। तो स्वागत है आप सभी का घरेलू नुस्खे क्रम में। देखिए सखियों, रसोई में रखा हुआ जो लाल लाल टमाटर है वो सिर्फ स्वाद का जादूगर नहीं है, बल्कि ये हमारे त्वचा की खूबसूरती का भी एक अहम साथी है, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल अम्ब्स भी। तो ये हमारी त्वचा की रंगत तो निखारते ही हैं, टैनिंग को भी कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। आइए आज हम इनका ही उपयोग करें। टमाटर के आधे टुकड़े पर शक्कर के कुछ दाने रखिए और उसे चेहरे पर स्क्रब करें तो आपकी सारी डेड स्किन तुरंत निकल जाएगी। टमाटर के ही रस में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर चेहरे पर अच्छी तरह लेप करने से और उसके सूखने पर ठंडे पानी से धो लेने से ऑयली स्किन और पिंपल्स भी कंट्रोल में हो जाएंगे। इसी तरह टमाटर का रस और दही का मिश्रण बना लें और उसे आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें। जिद्दी से जिद्दी टैनिंग को भी चुटकियों में हटाकर चेहरे को चमकदार बनाया जा सकता है। धूप से हुई जो टैनिंग है उसे भी आप कम कर सकती हैं इस तरह के उपयोग से। एंटी एजिंग में भी टमाटर बहुत फ़ायदेमंद है सखियों। इसके रस में थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लीजिए और चेहरे पर लगाइए, ये रिंकल्स को कम करेंगे। देखिए चेहरे के एक्ने और झाइयों के लिए तो टमाटर का रस रामबाण कहा जाता है। 2 चम्मच रस में चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच गुलाब का जल मिलाकर रुई की मदद से दाग धब्बों पर लगाएं और 15 मिनट बाद इसे धो लें, फिर कोई भी स्किन क्रीम आप लगा लीजिए। टमाटर के रस और जौ के पाउडर यानी ओट से आप घर पर ही बेहतरीन स्क्रब भी बना सकती हैं बहनों। इनसे 2-3 मिनट आप चेहरे पर लगाएं और फिर चेहरे पर मसाज कर लीजिए, ये आपके त्वचा की मृत हिस्से को आसानी से हटा देगा। तो बहनों, इन सभी प्रयोगों के दौरान बहुत ज़रूरी है कि पहले आप त्वचा पर संवेदनशीलता का टेस्ट ज़रूर कर लें। और अब इन्हीं नुस्खों के बीच में आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म रोटी।

घर आंगन का समय भी अब ढलने लगा है, यानी आपसे विदा लेने का समय भी अब हो ही चुका है। तो आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी है अपने मेल के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी होता है gharangan@gmail.com। यूं ही अपने विचारों से घर आंगन को महकाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज घर आंगन से अपनी सखी चंदा को अब यहीं विदा दीजिए। नमस्कार।

0: बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।

जी हाँ श्रोताओं, इसी गीत के साथ आप आज शामिल हो चुके हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। मैं हूँ आपके साथ आज आपकी फरमाइशें और आपके मेल लेकर शबनम। शब्दों में भावनाएं हों और भावनाओं में अपनापन, तो हर संदेश दिल तक पहुँच जाता है। आपके स्नेह, शुभकामनाओं और विचारों से सजे ईमेल हमारे लिए अनमोल हैं। आइए अब सुनते हैं आपके भेजे हुए संदेशों की मधुर गूंज, जो दूरियों को मिटाकर दिलों को जोड़ने का काम करती हैं। ईमेल की गूंज में आपका हार्दिक स्वागत है और ये वो मंच है जहां आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी बातें शब्दों का रूप लेकर हम तक पहुंचती हैं। हर ईमेल अपने साथ एक नई कहानी, एक नया एहसास और एक नया संदेश लेकर आता है। स्याही और कागज का दौर भले बदल गया हो, लेकिन भावनाओं की गर्माहट आज भी वैसी ही है। बस माध्यम बदल गया है और अब आपके संदेश ईमेल बनकर हमारे पास आते हैं। तो आइए सुनते हैं दिलों को छू लेने वाली ईमेल की गूंज।

कह दूं तुम्हें या चुप रहूं? चुप तो नहीं रहना है, कहना ही है। और आपसे अपने मन की बात के साथ साथ आपकी फरमाइशों को भी शामिल करते रहना है। तो ये जो गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म दीवार से। साहिर के बोल थे, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने, आवाज़ें रहीं आशा भोसले और किशोर कुमार की। और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, भटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन, रोजी और विलिस, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले, महादेव से दामोदर, बुल्ढाणा इस्लामपुरा महाराष्ट्र से सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार, माया देवी वर्मा, राहुल वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना। कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म गाइड से। शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत एसडी बर्मन का, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

गाइड फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था SD बर्मन ने और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से। लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफ़ीक पवार, बेनज़ीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास मोइन, छोटू शंकरलाल, साफिया अरहान और मोहम्मद हसनैन पवार। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद, सोनल बेबीसिया। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान और करणदीप। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि और बाला साहेब। शास्त्रीनगर बीट से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आदर्शनगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा से बलराम सेन और इंदु सेन। सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार और राम खिलावन सिंह पैंकरा। इसी गीत के लिए मेल मिले आप सभी के भी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा, मिखाइल और जैनब। रजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना, आशुतोष और मेरठ से अंजलि जैन और मिलन सरधाना। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं शबनम।

श्रोताओं, वैसे तो अंबिकापुर के आसपास के इलाके में हर रोज़ बारिश का मौसम बना हुआ है और वैसे गर्मी भी जारी है, लेकिन बारिश की इस फुहार में आपके ईमेल्स भी हमारे पास पहुंच रहे हैं और प्यार की फुहार, अपनत्व की बूंदें और भावनाओं की रिमझिम लेकर जब आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं तो फिर पूरा स्टूडियो, पूरा माहौल खुशबू से सराबोर हो जाता है। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म घरौंदा से। नक्श लायलपुरी की शब्द रचना है, संगीत जयदेव का, आवाज़ रूना लैला की, और इस गीत के लिए मेल मिले हैं आप सभी से। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी, सेक्टर चार रायपुर से कौशल गोस्वामी और रिंकी गोस्वामी, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास और शेख आज़ाद संग पोपोरानी, ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु, रीशु, वी चैतन्य कुमार, अभिषेक नायडू, आप हैं धनौरा बस्तर से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, गांव नथाना पंजाब से, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म घरौंदा से ये गीत आवाज़ है रूना लैला की।

आपने ट्यून किया हुआ है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 2:56 और आपके लिए खास पेश किया जा रहा है आपकी फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मैं हूं शबनम। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म आंसू बन गए फूल से, गोविंद मुनीस की शब्द रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से। रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देव शंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, बेबी पूजा, डॉली, राधिका प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अलकबीर और बनबघेरा राजनांदगांव से योगेश सारवा और आशा सारवा, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, आप हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह, आप हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम, सितंबर, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम, नूर साय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य, दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णवानंद, सत्यमानंद और परिवार के सभी सदस्य, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम और परिवार के सभी सदस्य। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म आंसू बन गए फूल से

आप चुनते हैं, हम सजाते हैं और बन जाते हैं ये पल सुहाने और यादगार। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज और मैं हूं आपके साथ शबनम। श्रोताओं, ये सफ़र धीरे धीरे आ पहुंचा है अब अपने आखिरी पड़ाव पर और कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे फिल्म गोपी से ये गीत। राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, आवाज़ लता मंगेशकर की और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से। बेलाडिला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिवप्रसाद देवदास मोहित कुमार, उत्तरा प्रमिला यमुना जमुना कुमारी अंजू मंजू और युवती देवदास, नारायण लाल साहू कुलवंतिन देवी साहू देवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी मिलिंद कुमार प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू, आप हैं सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू ज्योति, आप हैं ग्राम चरौदा बार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, कुरावली से राशिद हुसैन नसरीन नौरीन और आसना, साथ ही मोहम्मद कैफ अंसारी, दिलहरन गौतम अंजलि गौतम आनंद पटेल समृद्धि पटेल, आप हैं बलौदा छत्तीसगढ़ से, लिवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी राजादास मानिकपुरी रानी मानिकपुरी और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया देशानी और निमित आहूजा। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म गोपी से ये गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म गोपी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे यानी शबनम को दीजिए कार्यक्रम ईमेल की गूंज से विदा और आप अपना खास ध्यान रखिएगा। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा

0: मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए।

0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हर्ट्स और एफएमएट 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं और अब पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जगजीत सिंह की गई इस प्यारी सी गजल से।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे एक गीत, आवाज है शान की।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल। कलाम है कतील शिफाई का।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423006000। नंबर एक बार फिर 0777423006000।
2: गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे एक गीत

अदनान सामी को अभी आप सुन रहे थे इस गीत में। गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व आपको बता दें कि एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी दिल्ली से एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। अब हम आपको बता दें आज के शेष मुख्य आकर्षण। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ। भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा शाम 6:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे राम भजन और मुंजन दास मानिकपुरी के गाए कुछ सरगुजिया लोकगीत। फिल्म संगीत का माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का रजनीगंधा कार्यक्रम पेश करेंगे शाम 7:05 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण समय है शाम 7:30। इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया पर आधारित ये फरमाइशी कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे रात 8 बजे। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम पेश करेंगे रात 9:15 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज पेश करेंगे रात 9:30 पर। और प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। ये तो थे हमारे आज के शेष मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3:24 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। ये वक्त है हमारी सांध्यकालीन सभा के आगाज़ का। आइए सभा की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या

0: छत्तर है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरनाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के तपकरा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये महुआडी, कोनपारा, संतपारा, फुटसेरा, टिकलीपारा, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये सामरसिंघा, सोहनपुर, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, गलीमार, लोटान, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये गीत कुंवारी, गिरारी, पतरा पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहाभाठा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम के 5:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विनोद अग्रवाल की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ। संगीत निर्देशन है महेश प्रभाकर का।

विनोद अग्रवाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत कार्यक्रम भजन संध्या में। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं सुमंगल अरोरा की आवाज़ में ये गीत।

कार्यक्रम भजन संध्या की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गीत। संगीत निर्देशन है गुलशन कुमार का और गीतकार हैं रवि चोपड़ा।

कार्यक्रम भजन संध्या की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनिए मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार हैं पंडित नरेंद्र शर्मा। फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम।

मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत। कार्यक्रम भजन संध्या बस यहीं तक, शाम के 5:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

पास रहकर अक्सर लोग अनमोल नहीं लगते, दूर जाकर वही सबसे खास हो जाते हैं। जिनकी मौजूदगी की आदत सी हो जाती है वो दूर होकर दिल के सबसे पास हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सुमन ठाकुर और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम यौनवाणी। दोस्तों, जब कोई इंसान हर दिन हमारी लाइफ का हिस्सा होता है तो उसकी प्रेजेंस हमें बहुत सामान्य लगती है। हमें लगता है कि वो तो हमेशा साथ रहेगा, लेकिन जैसे ही वो इंसान थोड़ा दूर चला जाता है तभी उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, तभी उसकी बातें याद आती है, उसकी आवाज़ याद आती है, उसका केयर याद आता है और तब महसूस होता है कि वो हमारी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा था। दोस्तों, डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर की नहीं होती, कभी कभी लोग पास होकर भी बहुत दूर होते हैं और कभी कभी लोग हज़ारों किलोमीटर दूर होकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि रिश्ते दूरी से नहीं, फीलिंग और कनेक्शन से चलते हैं। आज की फास्ट लाइफ में हम सब बहुत कुछ बिजी होते हैं, करियर में, फ्यूचर में, गोल्स में, सोशल मीडिया में, इन सब के बीच हम अपने लोगों को टाइम देना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि कल बात कर लेंगे, अगले हफ्ते मिल लेंगे, बाद में समय निकालेंगे, लेकिन कई बार यही बाद में बहुत देर लगता है। दोस्तों, जब तक कोई इंसान हमारे पास होता है तब उसकी वैल्यू को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब वो दूर चला जाता है तब उसकी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती है। सोचिए, माँ हर रोज़ पूछती है खाना खाया, पानी पिया, दवा ली, और कभी कभी हमें लगता है कि माँ कितना पूछती है, लेकिन जब हम उनसे दूर होते हैं तो वही सवाल सुनने के लिए तरस जाते हैं। पापा रोज़ सलाह देते हैं, समझाते हैं, कभी डांटते भी हैं और हमें लगता है कि वो हमें रोकते टोकते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ अकेले उठानी पड़ती है तब उनके एडवाइस की रियल वैल्यू समझ आती है। दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा ही होता है, जब दोस्त रोज़ साथ होते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस

कम महसूस होती है, लेकिन जब कोई दोस्त किसी दूसरे शहर चला जाता है तब उसकी यादें सबसे ज़्यादा याद आती है। वो साथ बैठकर चाय पीना, वो बेवजह हंसना, वो छोटी छोटी बातें, सब कुछ स्पेशल लगने लगती है। तब समझ आता है कि फ्रेंडशिप सिर्फ साथ बैठने का नाम नहीं बल्कि दिलों के कनेक्शन का नाम है। दोस्तों, रिलेशनशिप कोई भी हो, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर या कोई स्पेशल पर्सन, हर रिश्ता अटेंशन मांगता है, हर रिश्ता रिस्पेक्ट मांगता है, हर रिश्ता टाइम मांगता है, और सबसे ज़्यादा हर रिश्ता अंडरस्टैंडिंग मांगता है। अगर ये चीज़ें बनी रहे तो डिस्टेंस भी रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज अगर कोई अपना आपसे दूर है तो उसे एक कॉल कीजिए, एक मैसेज भेजिए, उससे पूछिए कैसे हो। यकीन मानिए, शायद वो भी आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ समय मांगते हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ एक पहल। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि पैसे फिर कमाए जा सकते हैं, सक्सेस फिर हासिल की जा सकती है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते हमेशा वापस नहीं आते। अपने लोगों की वैल्यू कीजिए, उनके प्रेजेंस को अप्रिशिएट कीजिए, और उन्हें ये महसूस कराइए कि वे आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी डिस्टेंस सच में रिश्तों की रियल वैल्यू सिखा देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म छिछोरे से, जिसमें आवाज़ है अरिजीत सिंह की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं साजिद।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के क्रम महफिल में, जहां हम सुनेंगे कुछ प्यारी प्यारी सी गजलें आप ही के फरमाइश पर। जिंदगी की राह में कुछ ख्वाब सजाए हमने, गम की धूप में भी मुस्कुराना सिखाया हमने। लोग आते रहे लोग जाते रहे सफ़र में, हर रिश्ते को दिल से निभाना सिखाया हमने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई हुई ये प्यारी सी गजल, और इस गजल के फरमाइशकर्ता थे चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धोनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा। यूं मेरे खत का जवाब दे दो, अपने दिल की कोई किताब दे दो, बहुत तन्हा है ये शामें तेरे बिना, अपनी यादों का एक गुलाब दे दो।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई हुई ये प्यारी सी गजल, और इस गजल के फरमाइश करता थे रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज यादव। आंखों ने कही दिल में छुपी बात कह गई, बिना बोले ही चाहत की बरसात कर गई, हम सोचते रह गए इजहार का कोई बहाना, वो एक नज़र में ही सब कुछ कह गई।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई हुई ये प्यारी सी गज़ल, और इस गज़ल के फरमाइशकर्ता थे आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष नंदिनी जंघेल, धमदाग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य, अंजलि जंघेल, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल वर्मा। दोस्तों, अब आज की शाम का ये आखिरी गज़ल सुनते हैं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, मेरे अधूरे लफ्ज़ों को अपनी मोहब्बत से भर दो, जो बात दिल में छुपी है बरसों से कहीं, आज अपनी मुस्कान से उसी मुकम्मल कर दो।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की गाई हुई ये प्यारी सी गज़ल, और इस गज़ल के फरमाइशकर्ता थे रघुबीर नगर नई दिल्ली से श्रुति और किरण, छन्नी तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, रायपुर से विनोद वंडलकर।

तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये खूबसूरत सफ़र आपको पसंद आया होगा। इसी प्यार और अपनापन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सुमन ठाकुर। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: Vision of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एक

0: एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण ये है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विचार बिंदु। विषय है आत्मसंरक्षण। संकलन एवं वाचन स्वर है पॉलोमी के।
2: मनुष्य सहित इस संसार का प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। अपने जीवन, स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करने की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति ही आत्मसंरक्षण कहलाती है। यह केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी अपने भीतर समाहित करती है। आत्मसंरक्षण प्रकृति द्वारा प्रत्येक प्राणी को प्रदान की गई ऐसी शक्ति है जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति में आत्मसंरक्षण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। पक्षी अपने घोंसलों को सुरक्षित स्थानों पर बनाते हैं। पशु खतरे की आहट पाते ही सतर्क हो जाते हैं और पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को बचाने के लिए विशेष प्रकार के अनुकूलन विकसित कर लेते हैं। मनुष्य में भी यह प्रवृत्ति जन्मजात होती है। जब कोई व्यक्ति आग, दुर्घटना या किसी अन्य संकट का सामना करता है तो उसका पहला प्रयास स्वयं को सुरक्षित रखने का होता है। यही आत्मसंरक्षण की भावना है। आत्मसंरक्षण केवल शारीरिक जीवन की रक्षा तक सीमित नहीं है। आज के युग में मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। अत्यधिक तनाव, चिंता, अवसाद और प्रतिस्पर्धा के दबाव के बीच व्यक्ति को अपने मानसिक संतुलन की रक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए उचित विश्राम, सकारात्मक सोच, स्वस्थ संबंध और आत्मविश्वास आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करता है तो उसका संपूर्ण जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए मानसिक आत्मसंरक्षण आधुनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी आत्मसंरक्षण का विशेष महत्व है। व्यक्ति को ऐसे संबंधों और परिस्थितियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

0: ये जो उसके आत्मसम्मान या मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाते हों। दूसरों की सहायता करना एक महान गुण है, परंतु स्वयं को पूरी तरह भूल जाना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लगातार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास में अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है, तो वह धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। इसलिए आत्मसम्मान और आत्म देखभाल भी आत्मसंरक्षण का ही हिस्सा है। आर्थिक आत्मसंरक्षण भी वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए व्यक्ति को अपनी आय, बचत और संसाधनों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। आर्थिक रूप से सुरक्षित व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचना, बचत करना और भविष्य की योजनाएं बनाना आर्थिक आत्मसंरक्षण के महत्वपूर्ण उपाय हैं। हालांकि आत्मसंरक्षण और स्वार्थ में अंतर समझना आवश्यक है। आत्मसंरक्षण का अर्थ केवल अपने हितों के बारे में सोचना नहीं है, यह स्वयं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, जबकि स्वार्थ में व्यक्ति दूसरों के हितों की उपेक्षा कर देता है। एक संतुलित व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करते हुए समाज और दूसरों के प्रति अपने दायित्वों का भी निर्वाह करता है। इसलिए आत्मसंरक्षण को स्वार्थ नहीं बल्कि विवेकपूर्ण जीवन प्रबंधन के रूप में देखा जाना चाहिए। आज के तेजी से बदलते संसार में आत्मसंरक्षण का महत्व और भी बढ़ गया है। तकनीकी विकास, सामाजिक परिवर्तन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, भावनाओं और संबंधों और संसाधनों की रक्षा करना सीखना होगा। आत्मसंरक्षण हमें केवल जीवित रहने की नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अंततः कहा जा सकता है कि आत्मसंरक्षण जीवन का मूल स्वभाव और आवश्यकता दोनों है। यह व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में धैर्य, साहस और विवेक प्रदान करता है। जो व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखता है, वही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से पालन कर सकता है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसंरक्षण के महत्व को समझते हुए अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय चुनाई में अध्यक्ष के 5 मले 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करिस। शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा होए के बाद तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए है। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15 ले 20 दिन के बेरा लग थे। अब समाचार विस्तार ले। नगरीय निकाय के आम और उपचुनाव पर आज मतगणना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ले मिले जानकारी के अनुसार नगरीय निकाय में अध्यक्ष के 5 मले 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करीस। उन्हें पार्षद के 71 पद मले 39 में भाजपा और 30 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतीन हैं। 2 पद में निर्दलीय प्रत्याशी मन जीत हासिल करे है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मतगणना मतदान के दिन ही हो गए रहीस। आज सारिणीकरण करेगीस और जीते हुए प्रत्याशी मन ला प्रमाण पत्र जारी करेगीस। बताइन है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय मन के आम और उपचुनाव पर 1 जून के मतदान हुई रहीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा हुए में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के जनता कोती ले श्री मोदी ल बधाई और शुभकामना दिन। उमन किहिन के ए 12 बच्छर में देश बहुत अकन ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करे है। संग्रह विकास सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नवा आयाम स्थापित करे है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में देश भर के 42 उत्कृष्ट पंचायत मन ल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करीन। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरदेह ग्राम पंचायत ल स्वच्छ और हरित पंचायत के पुरस्कार प्रदान करेगी। तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है।

0: शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा, आरोपी मन के खिलाफ FIR और वैधानिक कार्रवाई शुरू होए के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ सामूहिक अवकाश स्थगित करे के निर्णय ले है। संघ स्पष्ट करे है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज ले नियमित काम में लहूटगिन है। संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरिया बताएं कि दो नामजद आरोपी मन के थाना में समर्पण के बाद हड़ताल स्थगित करे के निर्णय लेगिस। बता दें कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक संग मारपीट और सरकारी काम में बाधा डाले के मामला में प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जतात 1 जून ले सामूहिक अवकाश में रहिन। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के भीखमपुरा गांव पहुंचिन। इस दौरान मुख्यमंत्री हर जन चौपाल लगा के ग्रामीण मन ले गोट बात करिन और शासन के जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन के जानकारी लिन। श्री साय भीखमपुरा गांव करा स्थित सपेरा बस्ती घलो पहुंचिन, जहां ओमन PM आवास योजना के हितग्राही मन ले भेंट करके ओमन के समस्या सुनिन। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप विभागीय अधिकारी मल्ला निर्देश दिन है कि किसान मल्ला बेरा में खातू उपलब्ध कराए जाए। रासायनिक उर्वरक के उपलब्धता और वितरण व्यवस्था के समीक्षा करत श्री कश्यप जम्मू सहकारी समिति के गोदाम में जरूरी उर्वरक मन के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करे बर कहिन। श्री कश्यप किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के विस्तार में जोर देवत जम्मू जिला में विशेष शिविर आयोजित करे के निर्देश दिन। प्रदेश में किसान मन के आय बढ़ाए और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले राज्य सरकार है बासमती धान के खेती ला प्रोत्साहित करे के निर्णय ले है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अध्यक्षता में नवा रायपुर में ए विषय में उच्च स्तरीय बैठका आयोजित करेगी। बैठका में श्री नेताम कहिन कि राज्य सरकार किसान मन के आय दोगुना करे के लक्ष्य के संग बासमती धान के खेती ला प्रोत्साहित करही। ओमन अधिकारी मल्ला ए दिशा में गंभीरता ले काम करे के निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में काली 5 जून के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहाले रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम में आयोजित एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो ही, उन्हें वन मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि हो ही। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडे बताएं कि ए मौका में मुख्यमंत्री और वन मंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान के शुभारंभ करही। उन्हें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहाले विश्व पर्यावरण दिवस में काली रायपुर में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री OP चौधरी शामिल होंगी। कार्यक्रम के शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षक मन के प्रशिक्षण सत्र ले होगी। छत्तीसगढ़ के 5 नवा शासकीय मेडिकल कॉलेज में 149 पद मन ऊपर संविदा भर्ती करे जाही। चिकित्सा शिक्षा विभाग दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चापा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेज पर प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पद में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करे है। आवेदन के आखिरी तारीख 15 जून निर्धारित करे गए है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थी मन के चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार में करे जाही। इच्छुक उम्मीदवार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकत हैं। दुर्ग जिला में इबोला वायरस ल लेके स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गए है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा ले लहुटे 3 लोगन मनला इबोला वायरस के संदिग्ध मान के ओमन के निगरानी करे जाते। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह घलो एकर पुष्टि करत बताएं कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP ले सूचना मिले के बाद स्वास्थ्य विभाग संबंधित लोकन मल्ला पहचान के ओमल्ला होम आइसोलेशन में राखे के निर्देश दे है। बता दें कि केंद्र सरकार इथियोपिया

इथियोपिया और युगांडा ले आए दो मनखे मन के आने आने एयरपोर्ट के जरिया सीधा दुर्ग पहुंचे के जानकारी दे रहीस, जबकि कांगो ले लौटे एक मनखे पहली मुंबई में रुकिस और एकर बाद दुर्ग पहुंचिस। प्रदेश में इबोला वायरस ले जुड़े संदिग्ध मनखे मन के ए पहली मामला आगू आए के सेती स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरतत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनैया पंजीकृत श्रमिक परिवार मन के मेधावी लयिका मल्ला सम्मानित करही। योजना के तहत हरेक मेधावी छात्र ल 1,00,000 रुपया के प्रोत्साहन राशि दे जाही। एकरे संग दुपहिया गाड़ी खरीदे बर 1,00,000 रुपया के विशेष अनुदान दे के घलो प्रावधान है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच के है। मौसम विभाग एकर पुष्टि करत बताइस कि मानसून 3 दिन के देरी ले केरलम पहुंचे है। मानसून के 1 जून के केरलम पहुंचे के संभावना रहीस। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15 से 20 दिन के बेरा लाग थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि खरीफ सीजन पर खातू और बीजा के पर्याप्त व्यवस्था करे गए है और कालाबाजारी रोके पर निगरानी रखे जाते। रायपुर में दूरदर्शन डहर ले आयोजित मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में ओमन प्रदेश के आने आने जिला ले आए किसान मन ले चर्चा करके खेती किसानी में नवा तकनीक अपनाए के आग्रह करिन। मुख्यमंत्री है कहिन कि राज्य सरकार ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरक, जैविक खेती और फसल विविधीकरण ला बढ़ावा दे के कृषि ला ज्यादा फायदामंद और टिकाऊ बनाए बर काम करत है। श्री साय है कहिन कि खेती केवल आजीविका के साधन नहीं बल्कि हमारे संस्कृति और पहचान के आधार है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष के 5 में से 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करीस। शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा होए के बाद तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15 से 20 दिन के बेरा लाग थे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। आइए सांझ की गोधूली बेला का स्वागत करें कुछ लोकगीतों से कार्यक्रम गोधूली में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं भुईहारी गीत सरगुजिया लोक गायक राम भजन एवं साथियों की आवाज़ में।

0: सरगुजिया लोक गायक मंजन दास मानिकपुरी एवं साथियों की आवाज़ में कार्यक्रम गोधली का ये अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम गोधली बस यहीं तक, शाम के 6:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं सूरमा फिल्म का ये गीत। दलजीत दोसांझ की आवाज़ है, संगीत निर्देशन है शंकर महादेवन का और गीतकार हैं गुलजार।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,
2: कभी मैं हूर हूर कहता हूँ।

कार्यक्रम माधुरी में लीजिए सुनिए अगला गीत सरबजीत फिल्म से। आवाज़ है अरिजीत सिंह की, संगीत निर्देशन है अमान मलिक का और गीतकार हैं रश्मि विराग।

कार्यक्रम माधुरी की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं सत्यमेव जयते 2 का ये गीत। आवाज है जुबैन नौटियाल एवं नीति मोहन की, संगीत निर्देशन है रोचक कोहली का और गीतकार हैं मनोज मुंतशिर।

इसी के साथ कार्यक्रम माधुरी समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतगणना के बाद आज परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष के 5 में से 3 पदों पर भाजपा और 2 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जशपुर जिले की सरदी ग्राम पंचायत सहित 42 पंचायतों को आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश में होंगे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कल रायपुर में एक पेड़ माह के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। अब समाचार विस्तार से। नगरी निकायों के आम और उपचुनाव के लिए आज मतगणना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरी निकायों में अध्यक्ष के 5 पदों में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वहीं पार्षद के 71 पदों में से 39 पर भाजपा और 30 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। 2 पदों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना मतदान के दिन ही हो गई थी। आज सारणीकरण किया गया और विजयी प्रत्याशियों को पत्र प्रदान किए गए। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकायों के आम तथा उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान हुआ था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में देशभर के 42 उत्कृष्ट

0: पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की सर्दी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने पुरस्कार विजेता पंचायतों से कहा कि वे सर्वोत्तम तौर तरीकों को साझा करें, नवाचार को बढ़ावा देकर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करके और अंतिम सिरे तक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से श्री मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।
1: ऐतिहासिक काम हुए, उनका पहला 5 साल गरीब कल्याण के काम हुए हैं और दूसरे कार्यकाल में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 ये हटा है, आपका अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर 5 वर्षों के संघर्ष के बाद वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है, मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक बिल पास हुआ है। तो ऐसे काम जो असंभव से दिखते थे, माननीय दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब पूरे हुए हैं।
0: तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। शासन स्तर पर हुई सकारात्मक चर्चा, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज से नियमित कार्य पर लौट गए हैं। संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि 2 नामजद आरोपियों के थाने में समर्पण के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
2: इस बात को लेकर चर्चा हुई थी तो जल्दी ही कार्रवाई कराना कराएंगे। गिरफ्तारी होने पर हम अपने आंदोलन समाप्त कर देंगे। तो अभी हमारे आंदोलन जो है पूरी गिरफ्तारी नहीं होने तक स्थगित किया गया है 15 दिन के लिए, और यदि पुनः बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो 15 दिन बाद भी ये आंदोलन फिर से चालू किया जा सकता है।
0: गौरतलब है कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जताते हुए 1 जून से सामूहिक अवकाश पर थे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भिखमपुरा गांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्री साय भिखमपुरा गांव के पास स्थित सपेरा बस्ती भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में से 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल 5 जून को वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडे ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री और वन मंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री पांडे ने प्रदेशवासियों से पौधरोपण करने की अपील की।
3: कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्मृति वन में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें लोग आएंगे। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहे वाटर बॉडीज हों, वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है जंगलों की सुरक्षा का काम है, इको रेस्टोरेशन का काम हो रहा है और ये पूरा प्रयास चल रहा है कि वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण कार्य जंगलों में जो हम कर रहे हैं।

0: उससे जो जल स्तर बढ़ रहा है, सारे प्रयास इस तरीके से हो रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा हो और ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में नवाचार के कार्य हो सके।
1: वहीं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर कल रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय पर संगोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल गौरेला, पिंडरा, मारवाही और जांजगीर चांपा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश डेका ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल कल लोकभवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोकभवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। दुर्ग जिले में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे तीन लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। तीनों यात्रियों को होम आइसोलेशन में 21 दिनों के लिए रखा गया है। वर्तमान में तीनों यात्री पूर्णतः स्वस्थ हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए दो व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और इसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के सिलफिली के पास एक यात्री बस से 20 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर की ओर से आ रही एक यात्री बस में गांजा ले जाए जाने की सूचना ग्रामीणों को मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बस की जाँच की। इस दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि मानसून 3 दिन देर से केरलम पहुंचा है। मानसून के 1 जून को केरलम पहुंचने की संभावना थी। केरलम पहुंचने के बाद मानसून को छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में 15 से 20 दिनों का समय लगता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। युवा संगम फेज 6 के अंतर्गत दिल्ली से आए 60 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण किया। इस दौरान युवा प्रतिभागियों को औद्योगिक सुरक्षा, कार्यस्थल सावधानियों और संयंत्र भ्रमण के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। सरकार ने 16 जून से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र से पहले ही यूनिफॉर्म वितरण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। राजधानी रायपुर के सड्डू और माना सहित राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में रिक्त सीटों के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और जांजगीर चांपा जिले की अमिता श्रीवास ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। चांपा पहुंचने पर परिजन और नागरिकों ने उनका स्वागत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतगणना के बाद आज परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष के 5 में से 3 पदों पर भाजपा और 2 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जशपुर जिले की सरदी ग्राम पंचायत सहित 42 पंचायतों को आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश में होंगे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कल रायपुर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए आपको कल यानी शुक्रवार को हमारे केंद्र से प्रसारित

रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। रात्रि 10 बजे वक्त होगा रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान। हमारे श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:15 पर। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे। हमारे किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकेंगे शाम 7:20 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण समय होगा शाम 7:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गोधुली का प्रसारण समय होगा शाम 6:20 पर। हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे। दोपहर 2:30 पर वक्त होगा गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का। दोपहर 1:40 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर गोसाइन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 पर। खेती की बात का प्रसारण एवं पुनः प्रसारण का वक्त होगा प्रातः 6:45 एवं दोपहर 1:05 पर। शीर्षक गीतों का कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे दोपहर 12 बजे। श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री का प्रसारण समय होगा दिन के 11:05 पर। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुन सकेंगे प्रातः 9 बजे। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम इनसे मिलिए आप सुन सकेंगे सुबह 8:30 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर।

तो ये थे कल यानी शुक्रवार को हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और आज के शेष कार्यक्रमों में आपके लिए खास है, रात्रि 9:30 पर वक्त होगा हमारे श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल की गूंज का। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। शाम 7:20 पर वक्त होगा हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का। और अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं मेहंदी हसन की आवाज में ये गजल।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आइए सुनते हैं अगली गजल पंकज उदास की आवाज में। संगीत निर्देशन है रवि का और शब्द रचना है हसन कमाल के।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा की अंतिम गज़ल। कार्यक्रम रजनीगंधा बस यहीं तक, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे

0: राम राम विनु भैया।
1: राम राम कृष्णु भैया।
0: आओ बताई का हाल चाल है।
1: देखी हाल चाल तो बढ़िया है, बाकी पाछू धार यदि भेटा रहे नहीं
0: हाँ।
1: तो नगद गर्मी से हालाकान रहन
0: हाँ।
1: आज यदि भेंट हो से नहीं
0: हाँ।
1: तो दुई तीन दिन ले नगद देखी तो बरखा पानी हर हो से और आरा घाटा घलो
0: हाँ।
1: हाँ
0: वही पाछू देखे रहे नहीं तो आओ यदि बढ़िया गमछी गुमछा लो बांध के आए रहे
1: हाँ।
0: गला में तो भाई लटकाए रहन भाई घूमत बुलत आए रहन था
1: हाँ।
0: बाकी ये धार देखे नहीं वो दे राउर कहन कि दे चटी की दे बरखा हर होइस
1: होइस
0: तो कैसे कहते कि दे बरखा हर दे लीघे आएगी नहीं
1: लीघे आएगी सहाय। और देखिए दे भाई जो समाचार मन है नहीं ते मन तो भाई कहत है कि चटिक मानसून कर आए में बेरा है,
0: बेरा है
1: बाकी सालिन हमरे दे देखत ही कि हमर सरगुजा में नहीं ए दे नौतप्पा ले जे ओधेल नहीं
0: हाँ।
1: तेहर कहब नहीं यदि मानसून ले पहुँचत ले यदि भाई बढ़िया यदि भाई बूंदा बांदी हर गिरत रहेल आरा घाटा होत रहेल
0: हाँ।
1: आउ कही तो भाई यदि चटिक मौसम हर ठंडाएल
0: आउ देखब नहीं नवतपा हर जेन घनी शुरू होल नहीं
1: हाउ
0: वही घनी देखी हमारे दे किसान भाई मन अगुरे लगते कि अभी दे चटिक भाई पानी हर बरसी है नहीं
1: भाई
0: तो वही राउर कहे नहीं कि दो तीन दिन तक तो बरसीस
1: हाउ
0: बाकी वही लागत है नहीं कि हफ्ता 10 दिन में मौसम हरा ही की
1: आही भाई यदि देखी समाचार मन में कहता है बीच बीच में दशा हर गड़बड़ाए जाल नहीं तो एक दो दिन कर जो अनुमान है नहीं तेहर आगू पाछू हो जाए
0: हाँ।
1: बाकी देखी कहता है कि भाई यदि हमर हिसाब से देखिए यदि हमरे यदि 15 जून कर हिसाब से तैयार रथी कि यदि थरहा मल्ला करब
0: हाँ।
1: तो
0: धान
1: दुई
0: के नहीं
1: चार दिन आगू पाछू यदि उम्मीद तो है कि बढ़िया यदि कर सकत है।
0: और हमारे यहाँ तो धान कर खेती भाई
1: हाँ
0: ओकरे तो पहचान
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: तो भाई कहे कर मतलब यह है कि तैयारी ला शुरू कर दी नहीं
1: देखी भाई बिहान मन कर व्यवस्था है दे खाद मन ला सकेल ना होगी चाहे अगर चटिक अगर पानी चढ़त है खेत में नहीं तो भाई एक बह दू बह करके जैसे भाई दे नगद घामा में तो हमरे नहीं सकन तो अजय बढ़िया मौका है कि जैसे गिरत है अब अगर नांगर चढ़त है अगर चटिक भी नांगर लागत है नहीं
0: हाँ।
1: तो एक दू बह मार देहत ही नहीं तो अजय भी बढ़िया मौका है।
0: बेरा है आज
1: हाँ
0: देखिए आगू कर खेती हमारे रही नहीं बिनु भैया तो ये सियान मन ले पूछ पूछ के हमारे खेती बाड़ी ला करत रहे बाकी देखिए बेरा हर चटिक बीतीस नहीं तो नवा नवा हमारे दे कृषि कर उपकरण आएगी नवा नवा जानकारी भेटाएगी और आजकल तो देखी हाथे जानकारी
1: हाँ देखिए हमार कही नहीं डिजिटल इंडिया
0: हाँ।
1: अब देखिए हर गांव तक डिजिटल सुविधा पहुँचाए कर कार्यक्रम हमार सरकार भी चलाते हैं
0: हाँ।
1: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जिला का थे नहीं अब भाई ये मैं ऐसे कहता है कि हर गांव तक जो राउल डिजिटल इंडिया कर बात कहती इंटरनेट कर जो सुविधा है तेला

0: अब भाई मैं ऐसे कहता है कि हर गांव तक जो राहुल डिजिटल इंडिया कर बात कहती इंटरनेट कर जो सुविधा है तेला बढ़ाना और जो सरकारी योजना मना है सरकारी सेवा मना है तेमन देखिए आजकल ऑनलाइन माध्यम से ही हमर जग बगरा दे भेटा थे कहीं गोट बात हमरे करती तो राहुल अगर कहत हो तो देखी भाई हमरे का कथी कि अगर नगद जानकारी राहुल ला चाहिए नहीं तो ये दे फलाना वेबसाइट में ये दे जाए के और पूरा जानकारी ला राहुल देख सकता ही चाहे आवेदन कर सकता ही
1: कहीं जानकारी है। और आजकल तो देखी भाई जमो जानकारी है रोहित में भाई कहीं राउरे दे चटी बढ़िया जानकारी जानत ही नहीं मोबाइल कर बारे में चाहे कंप्यूटर कर बारे में तो घरे बैठे सब सुविधा हर उपलब्ध हो जाए कहीं प्रमाण पत्र राउल बनवाना हो। और आजकल तो देखिए हमर दे गांव गवई कर किसान भैया बहनी मन भी दे पेमेंट मन ला मोबाइल ले करते
0: खट ले भाई ये कहीं सामान बेसात है नहीं
1: हाँ।
0: ते कर दे टूडुंग ले करे ते कर पैसा पहुंच जाए खाता में
1: अलग बेच नहीं करे नहीं मेरा भी नहीं लगे
0: नहीं लगे। और भाई देखिए दे पहले ऐसे रहिस नहीं कि राउर अगर नगद बड़का सामान बिसाए पर जाता ही नहीं तो पॉकेट में पैसा भी नगद तेकर डर भी नगद
1: हाओ
0: हाओ भाई कि कहो जब कोई हर अगर लेहिस तो गड़बड़ा ही
1: कहो गिर गुरै जही कहो आगु देखी कहो कहो नहीं राउर दे हंसब बिनु भैया कहो कहो दे ताखा तुखी में पैसा मतलब रख देते रहे है नहीं कबो कबो दिया में झेर दे होला
0: चारे चारे चारे
1: तो उकस में तो भाई ढेरे तापलीक होए
0: हाँ हाँ
1: कि बढ़िया तो हम जो गाय के रखे रहे दिया वाला चाइब दही
0: चाइब दही सब दे दिवाली में दे ही क्ले
1: हाँ अब मोबाइल कर पैसा लग कैसे चाह भी
0: नहीं चाहे वो हर देखी कितना सुघर रहा है। और भाई ओकर संग संग किसनु भैया देखी राउर अगर कोई ला पैसा देहत ही मोबाइल कर माध्यम से ये डिजिटल इंडिया कर माध्यम से तो राउर हिसाब हर भी रहे
1: हिसाब हर भी रहे। और आजकल देखी कहो कहो सही बात लग कही नहीं कि कहो कहो डेरात हैं बाकी जे कस में डेरात रही नहीं वही कस जागरूक भी होई ना है बिनु भैया
0: हो
1: अब वो कस नहीं ठगाए वाला
0: देखी भाई ये दे सुघर ये सुविधा है और सुविधा है तो भाई ओकर फायदा हमन ला उठाना चाहिए। और देखी किसान मन कर भी एमें सुविधा है काबर की देखी ये दे राउर कहन नहीं हाथ में जम जात तो राउर के मौसम कर जानकारी चाहिए तो भाई ओकर बर भी मोबाइल ले दे फायदा उठा सकते है जान सकते है कि भाई आए वाला समय में कैसे मौसम हर रह सके वो हिसाब से हमारे खेती पाती संग संग कृषि मन कर संबंधित जो सलाह मन रहते नहीं तेहू मन भिटाए जाते हैं फसल बीमा कर जानकारी होगी चाहे बाजार भाव कर जानकारी होगी चाहे आने आने हमरे किसान मन कर जो जुड़ल योजना है सरकारी योजना ते सब कर जानकारी है।
1: यदि मंडी भाव कर बात कर ली बिनु है तो बहुत तो जानकारी एक रच में भेटाया जाए और सबले बढ़िया नहीं कि देखिए आगू हमन गोयट करत रहे कि दे बरखा हरा ही कि नहीं आही कब ले आही तो ये मौसम कर जानकारी आगु आही कि नहीं आही आही तो कतेक दिन में आही तो हमन खेती बाड़ी कर तैयारी कौन ढंग लेहन करी तो कुल मिलाए के कहब नहीं आज कल कर जो बदलत समय है नहीं तेकर में हमन ला डिजिटल रूप से मजबूत होना पड़ी कैसे कहते
0: एकदम सही बात राउर कहते ही और जम झन ला भाई जुड़ना पड़ी देखी तबे ये मइनसे मन से कदम मिलाए के हमरे चल सकते ही। बाकी देखी किस्नु भैया मैं कहत रहन कि जितना सुविधा बढ़ी से नहीं एक तरफ अगर सुविधा बढ़ी से दूसर तरफ देखी तो कहीं ना कहीं हमर जग समस्या भी यहाँ जेकर से निपटना भी हमर जिम्मेदारी है जरूरत है।
1: का समस्या ला कहत थी बिनु भैया राउर तो फिक राय दे
0: अरे भाई ऐसे आ है कि जैसे देखिए पर्यावरण हर खराब होता है तो सुविधा मन बढ़ाता है तो पर्यावरण जो हमारा है हर खराब होता है और उसने में एगो देखी खराबी हमारे इसे आदत है नहीं जेला सुधारना है हमन ला हुआ है कि ये दे सब्जी भाजी बेसो बर जाता ही नहीं तो ये झोला ला नहीं धरी
1: आगू देखी झोला ला धैर के जात रहे आज ये पता नहीं काबर एक अलसियाए जाते हैं कि काबर ओला नहीं सोचे जानते हैं कि भाई सब्जी भाजी मतलब हम ले जाब चाहे कहीं सामान ला ले जाब तो हमारा प्लास्टिक भेटाई चाहिए और वही प्लास्टिक में सब्जी भाजी मतलब लाइन के तहाँ ओदे घरे वाला निकाल के रखें तहाँ प्लास्टिक मतलब कहाँ फेंकें जेकर हो से इतनी बिनु भैया
0: तो वही हर तो गड़बड़ायल भाई। देखी प्लास्टिक प्रदूषण ला अगर हमरे कही नहीं ते हर सुविधा से संकट होता है।
1: हाँ
0: अजय देखिए हमरे कितना बढ़िया सुविधा कर गोट करत रहना। अभी देखिए एक सुविधा हर दूसर तरफ संकट।

0: दे भाई बनाता है तेला चटिक सुधारना है। और मैं तो देखी किस्नु भैया सुधारे हूँ, देखिए दे मौके अभी जैसे सब्जी ले जाती नहीं तो साग भाजी ले, अब तो आदत है देह वाला मन के भी शर्ट ले दे भाई पलास्टी में
1: राउत नहीं मांगा थी तब वो भेटा है
0: दे वो में भाई डालते हैं तेकर धरा थे मैं तुरंत कथो नहीं नहीं नहीं झोला धरे हूँ एमे डाला नहीं तो भाई ओकस में ओहू मनला लगे कि नहीं जो चटिक भाई ये हर एक तरह से कही तो भाई संदेश कर हिसाब से भी काम करता है। अब अपन देखी एकस जागरूक जरूर हमला होना है। मैं तो कहत हूँ राउर भी और जो जुड़ी ना है ते मनला भी हमला जागरूक करना चाहिए।
1: प्लास्टिक कर बात कहें नहीं राहू तो हमारे देखा वो कब देखा अब नहीं आन तान फेंक देती वाला जहर जानवर मन खाए देते तहाँ उमन कर देखी नहीं कबो कबो पेट ला नुकसान करते वह तो कहे में तो हमन तो ऐसने चोला फेंक डार थी। बाकी कहें नहीं राउर कितना बड़का संकट है अगर राउर इधर बैठ के सोचब नहीं तो राउर कर दिमाग हर घूम जाही बिनु भैया। और कहें नहीं कि भाई अगर से प्रदूषण हर फैलता है तो प्रदूषण हर भी तो जाना थी भाई कते तरीका कर प्रदूषण है। यदि जल प्रदूषण है मृदा प्रदूषण है यदि चिड़ई चुनगुन मतलब भी हानि हो जाते ये प्लास्टिक के चक्कर बात कहता हूँ। और देखिए हमार मनुष्य कर शरीर पर तो कर नुकसान होबे करते और कहीं यदि प्लास्टिक मतलब फेंक दे नहीं बिनु भैया तो खेते फेंक दे कहते नहीं कि जो खेत कर माटी है उकर गुणवत्ता में कमी आ जाए और फसल कर जो बढ़वार है वहू में उल्टा असर पड़ जाते। तो इधर राउर कर जो चिंता है नहीं हो स्वाभाविक है भाई अजरे ले नहीं फिकराब हम तो कैसे बने।
0: हाँ भाई देखिए समय रहते देखिए दे
1: मैं देखा था नहीं बिनु भैया कि राउर दे घड़ी कर कांटा ला देखा आते तो कैसे कहा थी
0: भाई कहा ऐसे आहूँ कि गोट बात हर तो हमारे दे चालू रही लेकिन देखिए हमारे कार्यक्रम कर बेरा हो गिसा है किसान वाड़ी कर तो चलत ही किसान वाड़ी कार्यक्रम में और उन्हें करत ही गोट बात।
1: हाँ

0: हाँ देखिए भाई, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी में सुनवैया जम किसान भैया बहनी मनकर स्वागत है और संग संग किष्णु भैया राउर कर भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ वेदे विनु भैया एतेक मान राउर भेटाए नहीं आओ वेदे बरखा बूंदी कर संकेत भी होएगी साहब है तो आगू तो देखी एक दो दिन पहले चटिक बरखा हराइस बाकी पहल बरखा जैसे आयल नहीं बिनु भैया तो हमारे दे किसान भैया बहनी मन खेत कर तैयारी ला शुरू कर देते और आगू देखी तो एदे गर्मी कर जुताई ला तो मैं कहता हूँ कि उसराई नहीं हुई
0: उसराइन हुई
1: राउर भी कहता हूँ कि राउर भी करिए दारे हो नहीं।
0: हाँ भाई देखिए दे कहीं कहीं ला कहब तो दुई बह दे कर पा रहे हैं ना कहूँ कहूँ और एक बह में ही छुट्टी से हाँ हाँ
1: तो एदे हमार यहाँ कर पहचान तो कहब धान और धान कर फसल कर तैयारी जो है नहीं एदे बरखा कर पहले ले हमार किसान भैया बहनी मन शुरू कर देते।
0: हाँ देखी भाई सबले पहले देखी राउर जेकस कहन नहीं कि भाई एक दूबा हमार खेत ला अगर हमारे पलट ले हथी नहीं तो उन्हें ले हमार तैयारी शुरू हो जाए ओकर बाद देखी हमारे एक तैयारी है दे बीज कर व्यवस्था।
1: हाँ
0: तो सबले पहले तो हमन ला किष्णु भैया देखिए दे अब समझना है कि हमन ला उन्नत किस्म कर बीज कर चुनाव करना है और कौन कस हमर खेत है नहीं वही कस दे हमर बीज कर चुनाव भी होना चाहिए।
1: और ये कथे नहीं बिनु भैया बीज कर तो बात कहन रहे थे
0: हाँ
1: उन्नत किस्म कर बीज कर चुनाव तो ठीक है
0: हाँ
1: बीजोपचार भी कथे के बहुत जरूरी है।
0: हाँ
1: कबर नहीं कि अगर बीजोपचार करके बीज ला हमारे लगाता ही नहीं तो आधा रोग भी आध लगे कर तो संभावना छर खत्म हो जाए। तो और दूसर बात कहें कि भाई अगर सही बेरा में उकर रुपाई ल कर ली सही समय में नर्सरी ल तैयार कर ली तो यही हर फायदा भेटा थे धान भर।
0: बिल्कुल भाई देखिए दे भाई ये हर कहीं नहीं अगर कथे नहीं कि भाई लड़का अगर होता है तो भाई ओला छोटे समय में बढ़िया तीहा जतन करके पोठ कर दे नहीं तो आए वाला समय में रोग मन से देखिए वो लड़का हर दूर रहे।

0: वही का समर अगर नर्सरी बढ़िया हो जाता है, बीजोपचार बढ़िया हो जाता है, खेत कर तैयारी मन बढ़िया हो जाता है, तो फिर तो फसल हर भाई बढ़िया होवे करी।
1: ऐसे नहीं, तो बढ़िया यदि 20-25 दिन में अगर स्वस्थ पौधा मन तैयार हो जाता है तो करो पाई ला कर सकती नहीं। और अजय तो बेरा है, बाकी भाई जानकारी कर बात करे में कहीं
0: नुकसान नहीं है,
1: नुकसान नहीं है तो ओला लगात है नहीं तो पौधा मन कर बीच में दूरी बढ़िया लहन रखें
0: जरूर
1: जितना अनुशंसित रहते भाई। एक ले कहा हो ही नहीं कि जो प्रकाश है रोशनी है और पोषक तत्व जो है नहीं वह पर्याप्त मात्रा में मिली ओला पौधा ला। और यदि बढ़िया लहन खेत कर अगर तैयारी कर बात करी तो खेत ला बढ़िया लहन समतल बना लेना चाहिए, अच्छा जुताई करके मिट्टी ला बढ़िया भुरभुरा बना लें। एक ठन और जरूरी बात है कि जल निकासी और सिंचाई कर जो उचित व्यवस्था है ओला जरूर बनाना चाहिए कि बरखा कर अगर आत है बरखा तब तो ठीक है, बाकी कभी कभी बरखा नहीं आए तो वो घनी भाई ये बात कर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ देखिए राउ तो जानते चाहिए कि यदि राउ यदि लैका छुआ मन कर बात करें नहीं कि अगर घरे लैका छुआ मन होए वाला है तो ओकर दाई कर पहले लेहन तैयारी करना पड़ते हैं। वही कस देखी हमार खेत कर माटी हमार खेत कर तैयारी तो भाई बढ़िया लेहन खातु कर भी प्रबंध कर लें। आ का खातु लगना है चाहे वो रोपाई कर समय कर बात हो चाहे पौधा बढ़त हो ते समय कर बात है बढ़िया लेहन उर्वरक कर प्रबंधन कर लें, माटी कर परीक्षण जरूर करा लें है नहीं। अब आजकल देखिए तो गोबर कर खाद कंपोस्ट और जैव उर्वरक कर ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे कर बात होता है। ह्यूमन कर ध्यान रखें भाई,
0: जरूर ध्यान रखें। देखिए काबर की भाई यदि गोठ हर महत्वपूर्ण होल नहीं तो भाई मन हर करेल कि हाँ यहू हर हो जाती। और राउर कहें कि माटी परीक्षण हर उतरे जरूरी है जितना जरूरी। देखी भाई हमरे बीज कर बात करी चाहे खाद कर बात करी चाहे खेत मन कर तैयारी कर बात करी उतरे जरूरी है। काबर की भाई ये दे ओकर से हमन भाई पोषक तत्व कर पता लगा थी कि भाई कितना पोषक तत्व है और का का कर कमी है का का हमर जग है।
1: हाँ एकदम सही गोइट कहें राउर। जरूरत कर हिसाब से देखिए सिंचाई करें पानी कर। अब बरखा हुआ तो है नहीं तो कभी कभी ध्यान नहीं दें हमार किसान भैया बहनी में और खेत में जरूरत कर हिसाब ले ज्यादा पानी भरे रहते तेहू छर तो नुकसान करते
0: करते
1: तो पानी निकासी कर जरूर व्यवस्था बनाए के रखें है नहीं। और जिससे जिससे पौधा हर बाढ़त है नहीं तो खर पतवार हर भी बैठ जाते हैं बिनु भी
0: बैठ जाते हैं
1: तो यदि हाथे अगर उला नींद से करते ही तो हाथे उला नींद के निकाल ली। और आजकल तो देखी निराई गुड़ाई कर भी ढेरे चिकन और औजार आएगी ना टिमर ले उला निकाल लें। और देखिए नहीं फसल कर देखिए नियमित रूप से परीक्षण जरूर करत रहें कावर नहीं कि ओकर में का किरवा लगता है कहीं रोग तो नहीं लगता है तो ये समय समय पर अगर ओकर निरीक्षण करत रही नहीं तो आगू चल के उकर जो उपज हर प्रभावित होते वहर प्रभावित नहीं हुए। हाँ अब देखी पौधा हर बाढ़ी स्थितिक है समय पर अगर उकर कटाई और भंडारण नहीं करता है तेहू छर नुकसान करी है। कटाई और भंडारण कर बात ला कही तुहर तो अगर हा बात ला मन करत ही भाई बाकी वही कहे नहीं राहु रे जानकारी रखे में कहीं बुराई नहीं है।
0: हाँ भाई देखिए अगर नवा किसान है नहीं पहल पहल धार अगर लगाना चाहता है तो जम जात ला भाई जुटाए के जानकारी ओकर बादे काम में भिड़ना चाहिए। अगर पहल धार राउर धान लगा थी तो तैयारी ले लेके यदि काट मीस के घरे यदि सकेल के कोठी में डाले तक कर सोचना पड़ी।
1: हाँ वही ला प्रबंधन करते
0: वही ला प्रबंधन करते वही गोठरा और मुके देखी बढ़िया सुगर सुगर बताते
1: तो भाई बढ़िया लेहन उकर विधि ला जान ले और कहे नहीं कि भंडारण तक कर व्यवस्था ला बनाए के रखें आगू ले तैयारी करके रखें। तो ये जैसे राउर धान कर भंडारण हो जाए नहीं घरे वही कस राउर करे तो पैसा कर भी भंडारण हो जाए काबर की बढ़िया लेहन आमदनी भेटा ही नहीं तो राउर कर मन हर बढ़िया हरियर रही अब यदि हरियरी कर बात करें नहीं तो मैं कहें कि एक दो ठन संदेश हैं तो तिमल सुनते हैं कि
0: लागी तो भाई।
1: हाँ।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: विनु भैया, संदेश मल्ल सुनिन भी अब का कहत ही राउर।
4: देखी भाई, यदि राउर गोट बात करत रहन नहीं वो समय राउर गोट बात करत करत एक बहुत बढ़िया बात ला भाई यदि शुरू करे रहन।
3: कैसे?
4: देखी वो बात हर रही देखी माटी कर परीक्षण कराए का। राउर कहत रहन कि देखी अगर राउर भाई माटी कर परीक्षण करा थी तो राउर ला पता चल जाए कि कौन कौन सा पोषक तत्व कर कमी है तेला राउर यदि डाल सकत है। तो मैं कहता हूँ कि देखी भाई इतना सुघर विषय में गोट बात कर रहे हैं तो चटी के बात लाओ गोट बात करते हैं तेकर यदि सुघर भाई एगो गीत सुनते नहीं। तो देखी ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है नहीं तेर बहुत सुघर कन योजना है। ये में इसे बताते नहीं कि सबले पहले भाई गर्मी कर समय में विशेष रूप से राउर अगर परती छोड़े ही ना तो वो समय देखिए दे राउर माटी कर जांच करवा सकते ही जो हमारे नजदीकी प्रयोगशाला है कृषि विभाग कर प्रयोगशाला में और वहाँ ले हमला पता चल जाए कि भाई का चीज कर कमी है भाई नत्रजन कर कमी है कि पोटास कर कमी है कि आने कौन सा पोषक तत्व कर कमी है और कोई कोई हर आग्रह भी हो जाए
3: ऐसे।
4: हाँ तो ओला भी बता देते हैं कि भाई हर आग्रह है। अब देखिए इला अगर जाना तो ही राउर नहीं कृष्ण भैया तो जो अनभनिया हमरे दे खाद ला डालती नहीं अजय राउर कहन अनुशंसित तो अनुशंसित वही क्षर है कि भाई
3: कितना डालना है
4: कितना डालना है। तो पहले देखी राउर के पता लगना चाहिए कि राउर कितना भूखा है वही हिसाब से राउर ये देखाना नागत कभो कभो भाई ये बढ़िया तिहार मन में बाहरी खाए जाती
3: हाँ मीठा तो है तेकर हपैच के खाए
4: देना। हाँ वो कस नहीं करना है भाई पहले ले राउर ये दे बढ़िया एक धार खाए चुके ही और कोई हर कहता है कि एक धाराऊ खाबे तो हम अल्लाह कहना पड़ेगा कि नहीं अजरज खाए तो वही कस अगर हमार खेत मन में हमार जो जमीन है जहाँ हमारे खेती करना चाहती कोई भी तो वहाँ देखी यदि भाई अलग अलग जो हमार कृषि है अलग अलग क्षेत्र है अलग अलग फसल पर अलग अलग अनुशंसित मात्रा रहे तो वही हिसाब से पहले हम अल्लाह पता होना चाहिए कि ये जो पोषक तत्व है ओकर कमी है इला चटिक बढ़ाना है और फिर पता चली कि ये पोषक तत्व हर उतना कम नहीं है जितना हमन सोचत रहे तो ओला हमन ला चट्टी घटाना है और दूसर बात ये भी पता चल जाए हमन ला नहीं कि कौन सा हमन फसल लेहे वाला ही जेमे ओहर जो हमार माटी है जेकर परीक्षण कराए ही ओहर ओकर बर बढ़िया है कि नहीं है
3: ऐसे नहीं है
4: वो फसल ला ले सकत है कि
3: नहीं। हाँ यदि बाद में मैं कहता हूँ नहीं कि यदि हमारे घर कर यदि नान छुआ मन जब होते नहीं तो तेमल हमरे दे टीका लगवाती
4: है
3: और टीका लगवाती तो एक ठन कार्ड भेजाए ओ कार्ड में लिखे रहते कि भाई इदे इतने बेरा में इला टीका ला लगवाना है नहीं छः महीना साल भर इक्कीस में बेरा बेरा में टीका ला लगवाना है। तो मैं कहता हूँ कि यदि माटी कर

0: जो स्वास्थ्य कर जो बात कहें राउ हाँ। में कार्ड बनते की
1: बनते भाई वह में देखी जम जात ला राउ ला लीक के दही
0: ऐसे
1: काबर की देखी भाई ये देखा था ला सूर था राखब
0: है नहीं
1: नहीं तो भाई यदि बिसर जाए आदमी
0: हाँ।
1: तो ओकस में हमन ला का करना है कि हमें लिख के देते हैं कि राउर में इतना पोषक तत्व तो मन का नाम लिखी ओकर आगू लिखी कि ओहर इतना है इतना नहीं है चाहे पीएच मान मन होएगी आने आने जम जात पूरा विवरण रही राउर जमीन करो में देखी भाई जब जम जात ला लिख दही अब ओकर बर पांच जगह कर राउर देखी माटी ला सकेल के लाने बरकत है
0: खेते कर
1: देखिए रुख राई कर तरी कर नहीं सकेलना है बाकी बढ़िया यदि बताते हैं ओमन कि भाई बढ़िया यदि गहरा करना है चटी का वहाँ ले भाई बढ़िया यदि तिकोना यदि गहरा खुदाई करके और पांच जगह कर राउर जो जमीन है मान ली खेत है मान ली नहीं तो चार कोना होगी सब एगो बीच कर वहाँ ले भाई बढ़िया माटी निकाल ली और ओला फेंट दी और फेंटे के बाद ओला भाई फिर पांच हिस्सा में बांट दी एक हिस्सा ला फिर वैसे करत करत कम करी और लगभग देखिए दे एक पाव आधा किलो ला लगभग हमें ललेजना पड़े तो वो चटिक बढ़िया बताते हैं वहाँ जाए ले भाई और सुगर बताही कैसे ऐसे करना
0: है बिनु भैया राहुल ला तो जमो जानकारी हरा है
1: देखी भाई दे भाई का रात रथों बीच बीच में मौका पाए के
0: हाँ।
1: हाँ।
0: है नहीं
1: तो भाई वो जानकारी मन भाई भेटा ही तो भाई वही हिसाब से खेती पाती में चटिक भीड़े रथो तो जानकारी मन तो है बाकी भाई देखिए दे अब मोर मन हर करत है नहीं कि राउ राउ कहीं पूछी ओकर ले पहले एक को गीत मन ला तो सुनाते हैं
0: अच्छी गीत सुनवास लगता है राहुल
1: लगता है
0: तो लेगी तो बढ़िया लेहन गीत है लग विजय सिद्धार उनको संगतमन गाइने हैं
1: लगी तो
0: हाँ।
2: मैया के अंगना माँ मधुर से घोले मैया के अंगना माँ मधुर से घोले देखी पियर रंग मुर मने

0: कैसन लागिस गीत विनोया
1: भाई? बहुत सुघर है दे भाई, राउर सुघर कन गीत सुनवायन और भाई दे भाई मन लगा तो मैं सुनत रहन। बाकी देखी भाई दे अब राउर बताई भाई आउ गोट बात कहत रहन राउर सुनवा बे दे भाई कोई किसान जग तो भाई कहाँ कर गोट बात है आउ तेला बताई आज। हाँ
0: देखी किसान आहें इधे लमगांव कर है नहीं और एदे मैं जानत हूँ कि राउर एदे गोएठ करे ही कि एदे रवि कर खेती ले का फायदा भेटा ही ता ए किसान आहे देखी श्यामलाल तो इनकर ले जो राउर गोएठ करे ही तेला सुनत ही
1: लागी तो

0: किसान वाणी सुनोइया जम किसान भैया बहनी मन के राम राम। भैया बहनी हो राहुल जान थी कि हमरे गोट बात करे बर आने आने गांव जाती आउ उहा बढ़िया खेती पाती करे वाला किसान भैया बहनी मन से गोट बात करके राउर मन ला सुनवा थी। वही क्रम में आज मैं पहुंचे हूँ लमगांव आउ यहाँ एगो बढ़िया खेती पाती करे वाला किसान मोके भेटाई। मैं सोचे कि गोट बात करूँ और राउर मन के सुनवाऊ। तो सबले पहले किसान भैया कर नाम जानत ही राउर नाम ला बताते हैं।
1: श्याम लाल।
0: तो श्याम लाल भैया राउर खेती पाती ही करती कि आने बूता भी कहीं?
1: तो खेती पाती करती।
0: तो अजे कर समय में का करे ही गोट्टा खेती ला बताई?
1: अभी तो वही खीरा लगाबो।
0: हाँ।
1: एकर बाद खीरा खत्म होई फिर ओमे डबल खीरा खीरेच लगी।
0: हाँ।
1: एकर बाद फिर मटर लगी। मतलब जो ड्रिप लगाए ही ना उमे हमन ला लेहे के विचार है तीन फसल। और बाकी तो अभी ये लगे रही फिर धान कर तैयारी भी करब अभी आए वाला समय में। फिर धान खेत में फिर धान लगे के बाद फिर गेहूँ लगाबो। जितना थोड़ा सा डांड जमीन है वही सब में खीरा रहेल।
0: परती नहीं छोड़ी?
1: हाँ खाली नहीं छोड़ी
0: है ना। तो कथे कि गर्मी कर खेती अगर करना है तो सिंचाई कर सुविधा जोरदार होना चाहिए।
1: हाँ हाँ।
0: राउर जग का सुविधा है?
1: तो हमारे जगह ट्यूबवेल है।
0: हाँ।
1: उकरे माध्यम से सिंचाई करथन।
0: नदी नाला कर नहीं है व्यवस्था?
1: नदी नाला हमारे जगह नहीं है।
0: है
1: वो भी सूख जाए अब पानी नहीं रहे।
0: राउर देखी यदि लीची भी लगाए के रखे ही रुख है राउर जग तो फरेल की इसने
1: फलेल।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: तो कैसे एकर बताई चटी भाई कहाँ ले लाने कैसे मन करी साउ केतरा फरेल तेला बताते। हाँ। चटी
1: तो ये पहले ला उड़ीसा वाला मनाए रहिन जो पिकअप में घुमाए गांव गांव में पहले।
0: हाँ हाँ।
1: तो वही समय ले है रहन। तो फल मन तो सब चालू है किसे है।
0: हाँ कमो बेस।
1: हाँ,
0: है ना। सीखे पर कहीं तो बढ़िया होगी।
1: हाँ।
0: सेब भी राउल लगाए ही तो ओला चटिक बताते कि कहाँ ले लाने ना सफल हो इसकी नहीं राउल सेब कर। हाँ। खेती ला शुरू करे रहते यार।

0: हाँ वो सेब कर पौधा ला यूट्यूब में मैं देखे रहे।
1: हाँ
0: हाँ तो फिर वही ऑर्डर करे वही हिमाचल प्रदेश, तो वही जब वो डाक विभाग से आई पार्सल के माध्यम से, तो अपन हिसाब से तो लगाए ही देख के।
1: मैं देखे देखी बढ़िया 4-6 गो फरिस भी है,
0: हो
1: आए कोई हर रोट है कोई हर छोटे बकी
0: हाँ
1: फरिस है बढ़िया लोभ लो
0: हाँ
1: भावन,
0: हो
1: तो यही कर 4-6 गो हिकलेल की कभो कभो बढ़िया भी हो जाए।
0: नहीं वाला खाए के तो देखे मस्त मीठा लगे, लेकिन साइजे हर बस छोटे है, वही समस्या है।
1: हाँ
0: और पता नहीं वो चीज़ का डंक मारेल की का है, थोड़ा सा पौधा हर ना सूखे कर शिकायत है।
1: अच्छा
0: बाकी तो पौधा लगाई और ठीक है, लेकिन एक ही पौधा में शिकायत आते।
1: नहीं चला देखी भाई, ये आने मौसम कर खेती है और राउर यहाँ करे ही है, वो हिम्मत कर बात है। अब देखी राउर जो सरगुजिया खेती कर बात है, जिला हमरे करती गेहूं होगी, मटर होगी, टमाटर होगी, गन्ना होगी, सभी बताएं कि मटर लगाब राउरे,
0: हाँ
1: तो चट्टी कोला बताई कि लगाब तो तैयारी मन चलत हुई, तैयारी ले ले के हिकलना मतलब शुरू होल तब तक कर बताई चट्टी प्रक्रिया ला।
0: तो मटर तो अजय समय है, मतलब दुई फसल निकल ही नहीं कर बाद जो ठंडा मौसम आई तब तो मटर लगी।
1: हाँ तो वही ला बताते हैं चट्टी की तैयारी मन में कैसे कैसे सोच के रखे ही, क्या क्या करना पड़ी।
0: तो तैयारी तो हमन ज्यादा ओकर नहीं करी, बस यही कि मैं तीन फसल लेता हूँ। जो अभी खीरा लगाबू ना, पहला खीरा खत्म हो जाही, वो 3 महीना में खत्म हो जाए। एकर बाद फिर हमन थोड़ा खेती वो धान वाला में उतर जाब, फिर रोपा ऊपर लगे के बाद फिर हमन बाड़ी में आ जाबो, फिर दोबारा खीरा लगाब वही में, फिर वो खीरा खत्म हुई तो फिर ठंडे मौसम आ जाही, वो समय फिर वही में लगाबू मटर।
1: हाँ तो इतना खेती करा थी मैं तो ये भुलाए भी जात हूँ का कह थी, तो सामान कैसे पूरा थी।
0: तो एमे ज्यादा खर्चा नहीं लगेल, जो लगाए रहथन वो खीरा वही चला फिर उखाड़ के फिर वहीच में खाद मन फिर डालथन, फिर वहीच में लगाए देथन बीज ला।
1: बनिहार भूतियार भी रखती कि घरे ले
0: नहीं ही
1: सब
0: रखना पड़ेल,
1: है ना।
0: अड़ोसी पड़ोसी ला बुलाना पड़ेल।
1: चला
0: और
1: भाई
0: बाकी तो
1: नगद,
0: घर कर सब लगबे करथन।
1: हाँ हाँ नगद फैलाए के रखे ही तो भाई इतना तो करना पड़ी। बाकी एक बात करिए है कि देखी सिर्फ ये दे खेत में डांड में लगा दे फसल नहीं होए, तीहा जतन कर जरूरत होए, तो ओकस में बीमारी मन अगर आते हैं तो का तैयारी रहे राउर की बीमारी कम हो और हो जाए तो कौन का सोला निपटना है तेला बताई।
0: हाँ तो बीमारी आ जाए तो फिर वही दुकाने जाना पड़े, बीज दुकाने दवाई उवाई, तो वही मन सलाह देते फिर वही हिसाब से छिड़काव करथन।
1: तो बीमारी ला कैसे बतात हो कि माहो लग गई इसकी पतई मन कोकड़ा थे, एकस
0: हाँ
1: बताती
0: हाँ
1: कि
0: बताना पड़े लो, फोटो वोटो खींच लेथन मोबाइल में, फिर ओमन ला दिखाथन तो फिर ओमन वो हिसाब से देते दवाई
1: असर
0: तब
1: होएल
0: हाँ काम करे।
1: बढ़िया बढ़िया। देखिए ये सुघर राउर खेती पाती कर थी, और ये क्षेत्र गन्ना कर नाम से मशहूर है, राउर भी गन्ना कर खेती में जाती
0: हाँ
1: थी।
0: गन्ना तो लगाया ही अभी नहीं, बस साल भर होगी से थोड़ा सा रेट कम रही तो छोड़ दे रहे हैं, धान के रेट ज़्यादा रही तो धान में उतर गए रहे हैं। लेकिन अब फिर विचार बनत है ये साल रेट ठीक है गन्ना कर, तो फिर बढ़ावो सोचा थी गन्ना।
1: सरकारी योजना बनकर लाभ लेती राउर की लेहे ही।
0: हाँ थोड़ा बहुत तो मिले सरकारी योजना कर लाभ, जिससे अभी स्प्रे मशीन मन दही है तो वही किसान सम्मान निधि भी तो सब वही में आवेल, बस वो मिलत है वो।
1: तो ये मशीन मन ला लाने ही जैसे सरकारी योजना करता था, और कोई हर जानत नहीं है कि महू पाते में ऐसे करके, तो ओला चट्टी बताई भाई कैसे भेटा ही ओला।
0: तो ओला वही ग्राम सेवक से मिलना पड़ी,
1: अच्छा
0: कुछ भी ऊपर से आयल तो ही मन बताते हैं।
1: ग्राम सेवक मन,
0: हाँ
1: और कागज पत्तर ला बताते हैं काका चाहिए
0: खसरा
1: से
0: बीवन, हाँ आधार कार्ड अभी तो यही मांगते हैं।
1: है ना।
0: बीच बीच में मिलेल गेहूं बीज मन भी कभी आ जाएल तो।
1: देखिए सुघर खेती पाती कर थी, आउ भाई उम्मीद है कि आउ सुघर खेती पाती राउर करब, लेकिन आलू मन नहीं लगाई।
0: नहीं आलू लगाथन
1: हाँ
0: तो आलू तो अभी सब कोड़ाएगी से ओकरो समय है, लेकर बाद
1: है ना
0: तो वो
1: मतलब,
0: बादाम उदाम भी लगाए ही थोड़ा बहुत खाए
1: हाँ
0: खाए बर घरे।
1: कहीं लानी छोड़ी।
0: जहाँ मौका मिलीस मतलब खाली कुछ न कुछ देखथन अपन हिसाब से।
1: ओ भाई एला तो फिर बाजार भी पहुंचाना पड़त हो ही कि कैसे करती।
0: नहीं ही बादाम मन तो बस खाएच बर रहे लो
1: नहीं
0: लगे।
1: आने आने मन जैसे
0: हाँ
1: नगद हुआ था है तेमन ला भाई पहुंचाती कि लेहे आते कि बाजारे जाती कुढ़ाए के बेचती का कस करती
0: नहीं ही अब समय समय की बात है, सब कस करना पड़ेल,
1: है ना।
0: मंडी भी जाएल कभी बाजार भी पहुंच जाती।
1: हाँ। आजकल देखिए दे तकनीकी सुविधा मन होइन है, तो चट्टी के काम बुता मन लिखरी होइन है राउर, जैसे बताएं कि यूट्यूब ले देख के और राउर दे सेब और लीची मन ला लगाए ही, तो बहुत सारा जानकारी रेडियो सुनत रहन पहले।
0: हाँ पहले सुनत रहे ना, अभी बीच में थोड़ा छोड़ दे ही, लेकिन अब लगा तो फिर जुड़ना पड़ी हमें।

0: पाथर देखी रेडियो में आई
1: हाँ
0: तो भाई सुनब
1: हाँ एकदम अब सुनने पड़ियो सब।
0: देखी खेती पाती कर गोट भी होल रेडियो में बढ़िया हमरे देखी विशेषज्ञ मन ला बुलाए के गोट बात भी करती। और राउर कस किसान से गोट बात होल तो भाई राउर मन विशेषज्ञ ले कम नी ही जानत ही अनुभव ले बाकी भाई सुनते तो बढ़िया सुघर आऊ सुविधा भेटातीस है नी। तो चली देखी बहुत सुघर राउर गोट बात करें और बढ़िया खेती पाती करत ही। और हमन तो भाई यही कहब कि आए वाला समय में आगुधार गोट बात करे आई तो आऊ नगद बताई कि भाई आऊ बढ़िया लाभ राउर कमा थी। राउर ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हाँ देखिए भाई ये सुगर गोट बात सुने न संग संग देखिए दे बेरा होगी की सहाय मंडी भाव मौसम कर जानकारी कर तो भाई ये दे भाई मंडी भाव कर बात करी तो राम तिल चलता है 7,000 रुपया प्रति कुंटल, गेहूं चलता है 2,428 रुपया प्रति कुंटल, कोदो 3,250 रुपया प्रति कुंटल और सरसों का तो 4,350 रुपया प्रति कुंटल।
2: अब मौसम कर बात करें नहीं बिनु भैया तो आज कर जो अधिकतम तापमान रही 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, कायल का अनुमान है कि अधिकतम 37 डिग्री रही और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रही।
0: संग संग आज कर सवाल भी पूछ दे थी धान बर देखी खेत कर तैयारी कैसे करना है तेला लिख के हमन ला भेजी और संग संग राउर कहता है कि किसानवाड़ी ले जाए कर बेरा होगी सहाय तो आज कर किसानवाड़ी एतरे छे।

0: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीं
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: संग संग चौपाल ले भी जाए कर बेरा होगी सहाय किस्नु भैया तो चलल जाए वो कहल जाए
3: राम राम।
0: अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश।

सुरमई शाम की ढलती हुई रोशनी और रात की इस मखमली शुरुआत में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी रितिका। और अपने साथ मैं लेकर आई हूं आप ही की फरमाइशों से सजा एकदम नया और अनोखा संगीत का सफ़र, जहां आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टा पेज पर कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश के पोस्टर पर आपने अपनी फरमाइश लिखी थी। तो अब बस आप अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब वक्त हो चुका है आपके नाम के साथ आपकी फरमाइशों को पूरा करने का, जिसे आपके साथ साथ पूरा अंबिकापुर सुनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गीतों और फरमाइशों के इस सफ़र की, और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म टू स्टेट से। आवाज़ है अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा की, संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का, और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

टू स्टेट फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़, अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा की आवाज़ में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से स्वरूप आनंद सरजाल, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रिहान, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया एवं आयान, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा सीता एवं परिवार के सभी सदस्य, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू, उमा राज, दिव्या भारती, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम, जोई और गुड़िया, पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी एवं शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा, बोईसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली।

और प्रियांशु साहू, गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवड़ भाम्बिस्टे, अनीता, राहुल और रविकांत भाम्बिस्टे, संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल प्राजक्ता, वैष्णवी गायत्री एवं यज्ञेश घोटके। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम का अगला गीत, कहो ना प्यार है फिल्म से। आवाज़ है लकी अली एवं राम्या की, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और गीतकार हैं इब्राहिम अश्क।

कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले एवं वसुधा वज्रसेन, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता एवं रुद्र वर्मा, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से ही हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि एवं नोखेलाल वर्मा, आरआर नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल एवं गोपी वर्मा, नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, योगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी एवं दिशा गोस्वामी, चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम श्याम, रवि आर्यन, रंजीत एवं रामानंद कुशवाहा, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश गोर्धन धरा, धनश्याम भार्गव, बाबू गौरी एवं हसन सिक्का, ग्राम पंचायत सिरकुतांगा महादेवपारा पोस्ट लापटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम परमान, लल्लू बल्लू घनू, अमित कुमार, अभिजीत गोविंद, सकल राम, प्रियांशु राजकुमारी, नेहा नायरा, समायरा खुशी, सौम्या उमेश्वरी, मुन्नीबाई सोनामती, माया राजवाड़े एवं सिमरन राजवाड़े, राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार, कृष्ण कुमार, सुनील कुमार, संजीव केवट, चितरंजन यादव, मनीष कुमार साहू, तेज कुमार साहू, अंबिका प्रसाद केसरवानी, रविशंकर राजवाड़े, गंगेश्वरी भास्कर, कविता मांझी, सुभद्रा केवट, श्वेता कुलदीप, सुरुचि कश्यप, राधा वर्मा एवं दुर्गेश्वरी। आइए सुनते हैं इंस्टा फरमाइश का अगला गीत फिल्म खामोशी से। आवाज़ है अलका याग्निक एवं हरिहरन की, संगीत निर्देशन है जतिन ललित का और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

खामोशी फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम नयन प्रकाश शारदा लक्की सीताराम सितंबर अमरनाथ मंगलमूर्ति रोशन राजवाड़े पांडेराम राजवाड़े नूर साय राजवाड़े हीरालाल प्रजापति कविता मरकाम एवं आरती मरकाम ग्राम अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े।

बबिता धिया काव्या एवं मंजू राजवाड़े, मुंडा टोला डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल कामेश एवं माहिर नेताम, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय शिवभगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा, ग्राम पड़ौली पोस्ट धौरपुर विकासखंड लुंड्रा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रथम प्रफुल्ल कैर।

इसे सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बंजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानो, मोइन छोटू, शंकर लाल गंगराडे, वनीता गंगराडे एवं मोहम्मद हसनैन पवार। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति एवं भूमिका अरोड़ा। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल एवं नफीसा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छींदा, जसवीर जस्सी एवं सीता एवं गीता। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर एवं स्वीटी छाबड़ा। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर एवं कुमार गौरव मंदूरकर। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन एवं जीवयम जैन। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली एवं आरती अरोड़ा। ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति एवं शिवांश वर्मा। बाबाकुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान एवं उत्कर्ष चौहान। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशिकी 2 फिल्म से। आवाज़ है तुलसी कुमार एवं अरिजीत सिंह की। संगीत निर्देशन है गीता गांगुली का और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

आशिकी 2 फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता अरविंद कुमार, गुड़िया, भव्या, निवेश, नियति, कुटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार एवं हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय एवं प्रांजल राय, ग्राम लोहाडहा जिला बागपत से जगमोहन सिंह, प्रजापत मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन, जगमोहन, सुधीर, नूतन एवं भुवनेश्वरी देवी, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार एवं नरगिस, ग्राम पंचायत खोंदाला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी सिंह पैकरा, करिश्मा सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा एवं ऐश्वर्या पैकरा। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत कभी खुशी कभी गम फिल्म से। आवाज़ है अलका याग्निक एवं सोनू निगम की, संगीत निर्देशन है संदेश शांडिले का और गीतकार हैं अनिल पांडे।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अभी आप सुन रहे हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला सिंह, विकास सिंह एवं ओम प्रकाश सिंह। सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती एवं अभय गुजराती। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई एवं भारती देवी। मुगलसराय से उरेंद्र कुमार एवं राजदीप। ग्राम चौरादाबार नवापारा अभ्यारण जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू एवं ज्योति ठाकुर। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, दुर्गेश्वरी जायसवाल। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश एवं परिवार के सभी सदस्य। सत्यम क्लब फूलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम एवं मनोज यादव। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग एवं तानिया नारंग। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश बस यहीं तक। इंस्टा फरमाइश के पोस्टर पर आपने अपने कमेंट के ज़रिए हमें जो प्यार भेजा है उसके लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। और अब मुझे यानी रितिका को दीजिए कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश से इजाज़त।

Sabéis. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या एवं इवनिंग न्यूज, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इम्पोर्ट के

0: लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
3: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं

0: and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasana Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasana a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top three. That's all in the news at 9. Good night.
1: अभी आप सुन रहे थे इवनिंग न्यूज़, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं कसूर फिल्म का ये गीत। आवाज़ है उदित नारायण एवं अलका याग्निक की।

करचम चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए अगला गीत केदारनाथ फिल्म से। आवाज़ है अरिजीत सिंह की, संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में लीजिए सुनते हैं चलते चलते फिल्म का ये गीत। आवाज है अभिजीत एवं अलका याग्निक की, संगीत निर्देशन है जतिन ललित का और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चलते चलते का ये गीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत बस यहीं तक। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आज के इस अंक में मैं रितिका आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जमाना कितना भी डिजिटल हो चुका हो पर खतों की अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है, फिर चाहे वो पोस्ट कार्ड के जरिए हम तक पहुंचे या फिर आपके मेल के जरिए। आज भी आकाशवाणी के अंबिकापुर का मेल बॉक्स आप सभी श्रोताओं के भेजे हुए मेल से गुलजार है। तो चलिए इनबॉक्स को खोलते हैं और पढ़ते हैं आपके नाम और करते हैं आपके द्वारा की गई फरमाइशों को पूरा। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म जोश से। आवाज़ है अभिजीत की, संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और गीतकार हैं समीर।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: संदेश के पहले आप सुन रहे थे जोश फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें मेल किया है हमारे श्रोता रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बविता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू एवं डब्बू, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी एवं पायल जोशी, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जिया उल हक, मोहम्मद उमर डावर एवं राजेंद्र कटारे, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, करेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा एवं ऐश्वर्या पैकरा, जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस एवं रिहान, मंचला रेडियो लिसनर्स क्लब अकोला से के शरद पाचपौर, शोभा पाचपौर, वैदही विहान, रश्मि अक्षय एवं अभिनय पाचपौर, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री एवं मोहम्मद शादाब खत्री, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का एवं तन्मय गजभिये, मित्रनगर बीड शहर से विकास बंसोडे, रेखा एवं अदिति बंसोडे। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कभी हाँ कभी ना फिल्म से। आवाज़ है कुमार सानू की, संगीत निर्देशन है जतिन ललित का और गीतकार हैं मजरूह।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: संदेश के पहले आप सुन रहे थे कभी हाँ कभी ना फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें मेल किया था हमारे श्रोता कर्मा चौक लोरी डी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू एवं निशांत साहू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। फलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद एवं लखन लाल देवांगन। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा, सविता मखीजा, स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद एवं कुमार डुडवानी। ग्राम धरदई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा एवं कृष्टि पटवा। दिल्ली से स्वीटी एवं प्रतिभा। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, हसन नवाज एवं शरीफ नवाज। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर एवं सदानंद मंदुरकर। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, रणजीत कौर, गुरकीरत एवं गुरशब्द सिंह। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक एवं बलवीर सिंह। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दुश्मन से। आवाज़ है लता मंगेशकर एवं कुमार सानू की। संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

दुश्मन फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया एवं कीर्ति भारती। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल एवं भारती बघेल। बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम कमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची एवं तनु कमरकर। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदरा, बिमला, इंदु, पार्वती एवं हिमांशु गोदारा। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन एवं इब्राहिम। ग्राम गोरमरा पोस्ट सूरेगांव तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोदा छत्तीसगढ़ से देवप्रसाद देवदास, राम अवतार, सोनू मोनू एवं पवन देवदास। शेरवानी स्कूल गंज डिंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, अनवर एवं लुबना अंसारी। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन एवं कविता गौड़। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा अंजनी, ज्योति, निधि एवं निखिल। कोरासी भैंसा रायपुर छत्तीसगढ़ से पवन कुमार साहू, क्रांति साहू, पंकज, सुष्मिता एवं दीपिका साहू। और अब लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म जिस्म से। आवाज़ है श्रेया घोषाल की, संगीत निर्देशन है MM करीम का और गीतकार हैं निलेश मिश्रा।

जिस्म फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, आरती, गौरी एवं ओम, रघुबीर नगर नई दिल्ली से श्रुति एवं किरण, छतरी तालाब अमरावती से साधना रानी एवं किशोर गुप्ता, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा एवं विविधा वंडलकर, अराड़ नांदघाट से माखन वर्मा एवं गोपी वर्मा, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे एवं अमूल्य बाठे, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल एवं नफीसा प्रवीण। कार्यक्रम ईमेल की गूंज बस यहीं तक। आज रात हमसे जुड़ने के लिए, अपने खूबसूरत जज्बात ईमेल के ज़रिए हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। और अब मुझे यानी रितिका को दीजिए कार्यक्रम से इजाज़त।

मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रादेशिक लोक और

0: आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर्रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, an A-grade artist of All India Radio. Soumya Mishra hails from Madhubani, Bihar. She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कुहकर बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: दैट वॉज अ मैथिली कॉम्पोजिशन परफॉर्म्ड बाय सौम्या मिश्रा। शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन विद अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं उड़ीसा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नहीं, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूँ एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिकला टोरी। पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela.

1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। इसी के साथ हमारी ये सांध्यकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:51 पर हम अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।